0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578 6।
3: जी हाँ 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

निंड जो खूबसूरती सां गहरो तालुक आहे ऐं निंड खां सवाइ तव्हां खूबसूरती जी उमेद बि कोन था रखी सघो। आमतौर ते हर माण्हू रोज़ानो राति जो 7 खां 8 कलाक आराम करे थो। अक्सर केतिरा माण्हू आराम बि घटि कंदा आहिनि ऐं आराम करण दौरान माण्हू जो जेको जिस्म आहे हुन में हार्मोन्स पैदा थींदा आहिनि जंहिं सां इंसान खे तवानाई हासिल थींदी आहे। जीअं ईअं खणी चऊं त अॼोके दौर में जीअं मोबाइल जी बैटरी चार्ज थी वञे ऐं उन जे करे माण्हू 3 खां 4 कलाक वधीक उन बाद कमु करे सघे थो। निंड दौरान फितरी अमल ज़रिए इंसानी जिस्म जा सेल्स जेके आहिनि उहे ताज़ा थी वेंदा आहिनि ऐं निंड सां दिमाग़ खे सुकून मिलंदो आहे जेको जिस्म जे मुख़्तलिफ़ मुतालबनि खे पूरे करण में मदद ॾींदो आहे ऐं सोच वीचार करण में आसानी थींदी आहे। तव्हां जी जेका चमड़ी आहे स्किन आहे उनखे जिन शयुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे सॼो ॾींहुं कमु करण सां तव्हांजी चमड़ी जा जेके टिश्यूज़ आहिनि सुकड़ लॻंदा आहिनि ऐं अव्हां जूं अखियूं कुझु न कुझु ॾिसंदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं मुस्कराइण या ॻाल्हाइण में बि हरकत हूंदी आहे सुम्हण दौरान।

जी साईं मुंहिंजा हिन हफ़्ते तव्हांजे लाइ असां जेको सवाल ॻोल्हियो आहे शायरीअ जे चंद सिटुनि मां असां जेका गुजरात ॻोल्ही आहे उहा ॾिठी आहे ॾिठ मां हिकिड़ो सवाल निकिरे थो हिकिड़ी गुजरात निकिरे थी उन्हनि लफ़्ज़नि मां तव्हां जेको आहे सो जवाबु कढी सघो था त असांजो जेको सवाल आहे सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पेरें पंधु सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पेरें पंधु हणण कयऊं हथनि सां सारो ॾींहुं समंद हाणे कासम खणी कंध निहारनि निमाणनि निणनि सां त इन मां असांजो जेको सवाल आहे गुजारत आहे निकिरी सघे थी ऐं उन लाइ तव्हां असां ॾे जवाब सही मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में एस एम एस ज़रिए तव्हां एल आर के लिखी पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था ऐं तव्हां असां ॾे फेसबुक जी आई डी ते बि GFM88 जी आई डी ते तव्हां असां ॾे मोकिले सघो था फेसबुक ते ऐं तव्हां असां ॾे 10 बजे खां बाद में कॉल करे लाइव कॉल करे तव्हां असां ॾे तव्हां नालो पंहिंजो लिखाए सघो था सवाल जो सही जवाब लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा वरी बि असां ॻाल्हि कंदासीं त सिहत मंद रहण जो ज़िंदगीअ लाइ ज़रूरी आहे ऐं सिहत असां पंहिंजी पाण सही करे सघूं था हुन में ईअं हूंदो आहे त गैर मयारी शयूं घटि इस्तेमालु कयूं वक़्त सिर पंहिंजो खाधो वापरायूं ॾींहं में 10 खां 12 गिलास पाणी पीऊं ऐं पाणी जिस्म में मौजूदु चर्बीअ खे ख़तमु करण में मदद करे थो ऐं खाधे जी ख़्वाहिश खे पिणु घटाए थो घणे मक़दार में पाणी पीअण सां जिस्म में मौजूदु ज़खीरो जेको फिल्ड आहे उहो निकाल थी वञे थो ऐं पुराणे दौर जा माण्हू तंदुरुस्त रहंदा हुया छाकाणि त उहे हिकु शहर खां ॿिए शहर ताईं मुसाफ़िरी कंदा हुआ यानी पंधु जेको आहे उहो प्यादल कंदा हुया जॾहिं तव्हां तकिड़ो पंधु करियो था तव्हांजी पंहिंजे पाण में तव्हां महसूसु कंदव त तव्हां में हल्काई ऐं तकिड़ाई महसूसु थींदी तव्हां जे साह खणण जो अमल तकिड़ो ऐं गहरो थींदो सुठी सिहत लाइ मुख़्तलिफ़ खाधा चूंड ज़रूरी आहे ऐं खाधनि खाइण सां ई मुख़्तलिफ़ सब्ज़ियुनि सां तव्हांखे ज़रूरु फ़ाइदो पवंदो छो त ईअं ई आहे त पंहिंजी सिहत सही रखण लाइ ज़िंदगी लाइ तमामु ज़रूरी आहे।

0: It's 10 a.m. This time.
1: आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
2: शिकस्त नहीं आलमी चैंपियन बन जी रहे हो. स्पेन जे रांदीकर फेरन टोर्स शानदार गोल करे टीम के 16 सालन बाद बियो बेरो चैंपियन बनाए छड्यो. मैच जो फैसला थी गोल इजाफी वक्त जे बे हाफ में थियो. अर्जेंटीना जे गोलकीपर मार्टिन शानदार कारकर्दगी ए मुजाहिरो कंदे केतरा यकीनी गोल बचाया. वर्ल्ड कप जे 8 मैचन दौरान का भी टीम स्पेन खिलाफ बरतरी हासिल न करे सघी. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन जे फाते टीम के ट्रॉफी पेश कई. अर्जेंटीना जे रांदीकरन के चांदी जा तमगा दिना वया. ग्राउंड में स्पेन जे रांदीकरन जो जशन. वर्ल्ड कप में शिकस्त ते अर्जेंटीना जो कप्तान मेसी लुड़क लाड़े वेठो.

ते फुटिंग बोगियूं पटड़ीअ तां लही वयूं। अप ऐं डाउन रेलवे ट्रैक 24 कलाक लाइ बंदि। कराकरम, तेज़गाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियनि ट्रेनुनि खे मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते रोकियो वियो। वहाब शाह रेलवे स्टेशन वटि माल गाॾीअ जूं केतिरियूं बोगियूं पटड़ीअ तां लहण सबबि ट्रेनुनि जी अच वञ मुतासिर थी वई। टीएस रेलवे कराची जो चवण आहे त हादसे सबबि अप ऐं डाउन रेलवे ट्रैक मुकमल तौर मुअतल आहे। रेलवे ट्रैफिक 24 कलाकनि ताईं मुअतल रहण जो इम्कान। ट्रेनुनि जी अच वञ 24 कलाकनि ताईं मुअतल रहंदी। कराकरम एक्सप्रेस खे हैदराबाद, अलामा इक़बाल एक्सप्रेस खे कोटड़ी स्टेशन ते रोकियो वियो आहे। पाकिस्तान एक्सप्रेस खे लांडी, तेज़गाम एक्सप्रेस डिग रोड ऐं फरीदाबाद एक्सप्रेस खे कैंट स्टेशन ते रोकियो वियो आहे। अवाम मौको ॾिनो त कश्मीर जोहर फोरम ते आवाज़ उथारींदासीं। आज़ाद कश्मीर ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ठाहींदासीं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो कोटलीअ में जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ चयो त पीपल्स पार्टी कश्मीर जो केस पूरी दुनिया में विढ़ियो। FIR कटराईंदड़नि खे बख़्श न कबो। गिलगित बल्तिस्तान जीअं कश्मीरनि जे हक़नि लाइ जिदोजहद करे रहिया आहियूं। आज़ाद कश्मीर जे अवाम खे हक़ हकमियत, हक़ मिल्कियत ऐं हक़ रोज़गार ॾियारींदासीं। बेनज़ीर भुट्टो चयो जिते कश्मीरनि जो पघर वहंदो उते असांजो रतु वहंदो। शहीद ज़ुल्फ़कार भुट्टो असांखे सेखारियो त कश्मीरनि जो फ़ैसिलो सिर्फ़ कश्मीर ई कंदा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वोट ख़ातिर नफ़रत न पखिड़े क़ौमी लीडर थी ॻाल्हियूं करे। ख़्वाजा आसिफ़ बाबा संदसि बयान मुनासिब न हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जे सियासी मशीर राणा सनाल चयो त बिलावल भुट्टो जूं तकीरूं हालतूं ख़राब करे सघनि थियूं। हू इशारनि में ज्वाइंट एक्शन कमेटीअ जे पाबंदी वारे फ़ैसिले जी मुखालफ़त करे रहियो आहे। ज्वाइंट एक्शन कमेटीअ ते आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ पाबंदी मड़ी। वफ़ाक़ी हुकूमत हिमायत कई हुई। मुस्लिम लीग नून जी कंहिंखे लत हणी कढण जी रिवायत न हुई न आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कश्मीर में नून लीग जे वज़ीरनि जे भड़कयल भाउ खे विसाए रहियो आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण जो राणा सनाला जे बयान ते रदि अमल। शर्जील मेमण चयो त वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे गैर ज़िमेवारनि बयाननि सां कश्मीर में नाकारी माहौल पैदा थी रहियो आहे। नून लीग जे वज़ीर गैर संजीदगीअ वारी सियासत सां कश्मीरी अवाम जी तोहीन कई। वफ़ाक़ी वज़ीर पंहिंजे बयाननि ते माज़रत करण खां बि लवाए रहिया आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिकु क़ौमी अॻवाण तौरु हक़ीक़ी किरदारु अदा करे रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चइनि सूबनि में कश्मीर ऐं गिलगित जो मज़बूत आवाज़ आहे।

0: पीटीआई बानी ऐं संदसि कुटुंब पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ करार। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी ऐं ममलकती वज़ीर तारिक तलाल चौधरीअ जी ॻाल्हि ॿोल। तारिक फज़ल चौधरीअ चयो त हक़ जी जंग बाबति नूर नियाज़ी बयान जो अफ़सोसनाक ऐं मज़म्मत जोॻो आहे। हक़ जी जंग पाकिस्तान जी तारीख़ी कामयाबी आहे। पीटीआई बानी ऐं संदसि कुटुंब जो हदफ़ पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण आहे। नूरीन जे बयान मां वाज़ थियो त उहे पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ आहिनि। अता तारड़ लाहौर में ख़िताब कंदे चयो त नूरीन जे बयान ते अवाम में कावड़ आहे। भारतीय मीडिया खेसि वॾी कवरेज ॾिनी। हिन जी सियासत दफ़न थी वई आहे। कश्मीर में हिजरत करे आयलनि जूं सीटूं केर बि ख़तम नथो करे सघे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं वेंसवेला जे परडे॒ही वज़ीरनि विच में फोन ते राब्तो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पारां वेंसवेला में ज़िलज़िले सबब जानी नुक़सान ते ताज़ियत जो इज़हार। परडे॒ही वज़ीर इसहाक डार चयो त उमेद आहे त वेंसवेला जल्द बहालीअ तरफ़ अची वेंदो। पाकिस्तान डुखे वक़्त में वेंसवेला जी हुकूमत ऐं अवाम सां गॾु बीठल आहे। परडे॒ही वज़ीर पाकिस्तान तरफ़ां हमदर्दी ऐं एके जे इज़हार ते थोरा मञा। वेंसवेला पारां अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान जी हाकारी किरदार जी साराह। DGISPR जे समर कैंप 2026 में शरीक शागिर्दनि सां ख़ासि वेहक पूरे मुल्क जे 18 खां वधीक शहरनि जा 9 ऐं 12 जमायत जा 4000 खां वधीक शागिर्द शरीक। DGISPR ख़ासि वेहक में क़ौमी सलामती ऐं दहशतगर्दीअ चैलेंज ते तफ़सीली रोशनी विधी। शागिर्दनि जो चवणु हो त असांखे मुल्क खे पेश ईंदड़ अंदरूनी ऐं परडे॒ही सिक्योरिटी चैलेंजेस बाबति असराइती आगाही मिली। बलोचिस्तान में भारतीय प्राक्सी फितनतुल हिंदुस्तान ऐं फितनतुल ख़ारिज जे नापाक किरदार बाबति आगाह कयो वियो। हिन दौर में ग़लति मालूमात ऐं प्रोपेगंडा तेज़ीअ सां पखिड़जण बाबति आगाही ज़रूर आहे। बबरलो में अॻुवा ऐं गुम थी वियल ॿारनि जे बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी कैंप 24 ॾींहं बि जारी। मुज़ाहिरीन पारां मुतालबा न वञण जी सूरत में क़ौमी शाहरा ऐं रेलवे ट्रैक बंदि करण जो चिताउ। अॻवाणनि चयो त वाइदनि ते अमल नाहे थियो। ख़ातिरी कराइण बावजूद का बि अहम अॻबराई साम्हूं न आई। पुलिस रोज़ जे बुनियाद ते जांच बाबति आगाही ॾियण जो वाइदो कयो हो, उहो बि पूरो न कयो पियो वञे। पुलिस ॿारनि जे वारसनि ते दॿाउ विझी रही आहे। खेनि धमकियूं ॾिनी पियूं वञनि। ॿारनि जे अॻुवा ऐं दरिया ते धाड़े ख़िलाफ़ जीए सिंध महाज जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा धरणा। कंदकोट, सन्नो, ठुल, कुनरी, फ़क़ीराबाद ऐं ॿियनि शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। हैदराबाद में बि सुजाग ॿार तहरीक पारां अॻुवा थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी वई। सिंध जे पाणीअ ते धाड़े ऐं 28 तरमीम ख़िलाफ़ रैली। अॻवाणनि चयो त सिंध में मासूम ॿारनि जी अॻवा करण तोड़ी ॿारनि सां ज़ियातुनि जा वाकिया मामूल बणिजी विया आहिनि। पाणी खोट सबबि सिंध में बेरोज़गारी गुरबत वधी रही आहे। पाणी फराहम कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में
2: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6।
2: जी हां 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह में पाण वापस अची चुका गाल कंदासीं त मेहनत मेहनत जेका है सख्त मेहनत करण सां इंसान के तकलीफ नहीं पहुचंदी असां के अक्सर इंसानी जिस्म जे सख्त यानि हुजण सां तहजुब थींदो आहे उन में न बीमारी थींदी आहे थकावट थींदी आहे पर सर्दी गर्मी जो असर भी अहिड़ो घटि थींदो आहे उन में आसानी जेका आहे थी वेंदी आहे असांजे मुआशिरे में केतिरियूं अहिड़ियूं अमड़ियूं माइरूं मौजूद आहिनि जेके वधीक औलाद हुजण बावजूद बग़ैर कंहिं पंहिंजो कमु कंदड़ मुलाज़िम रखण जे पोइ बि पंहिंजो जेको घर जो कमु आहे अकेले सिर कंदियूं आहिनि जेको बि हुन में माल ढगे जो कमु हुजे रद पजा जो कमु हुजे ऐं थांव ते फा हुजनि या लटो कपिड़ो धोइण में कोई बि हुन में आर न कंदियूं आहिनि पंहिंजी सॼी महिनत पाण कंदियूं आहिनि का बि घर में अहिड़ी मासी कमकार वारी न आहिनि रखंदियूं ऐं कुझु औरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेको सॼो ॾींहुं फारिग हूंदियूं आहिनि ऐं मोबाइल इंटरनेट ते कमकार वेहंदे पोइ बि चवंदा आहिनि पंहिंजो थक आहे मथे में सूर आहे ऐं कमु करण जहिड़ियूं न आहियूं बहरहाल कुझु औरतूं सिलाई में मसरूफ़ हूंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾींदियूं आहिनि ऐं पंहिंजी हमेशा घर जे कमकार सां वधीक महिनत कंदियूं आहिनि महिनत ज़रूरी आहे ऐं जेतिरी बि इंसान महिनत कंदो महिनत में अज़मत आहे ऐं कोशिश करे माण्हू जेको पंहिंजो हथ जो पुरियो आहे हथ जी महिनत आहे उहो वधीक आहे हुन में आराम बि अचे थो सुकून बि अचे थो ऐं इंसान जी दिलि जेका आहे उहा मुतमैन हूंदी आहे।

जी साईं मुंहिंजा, दुनिया में माण्हुनि खे जेकी नफ़्सियाती मामला ऐं मसाला थियनि था उन्हनि खे आमतौर ते डिप्रेशन कोठे वञे थो, ऐं डिप्रेशन जा जेके मुख़्तलिफ़ सबब थियनि था जिन में को घरू सदमो, डुख, मुआशी मसाला या बेरोज़गारी बि, उहे चंद सबब हूंदा आहिनि डिप्रेशन जा, जंहिंजे करे उहा सूरत हाल पैदा थिए थी। पर जेकॾहिं को डिप्रेशन जो शिकार ऐं उन मंझां को बि सबब उन ते लागू नथो थिए, त पोइ उन जो असुल सबब ॻोल्हणु ॾुखियो थी वञे थो। हक़ीक़त इहा आहे त डिप्रेशन जो हिकड़ो वाज़ियो सबब इहो बि थी सघे थो त काफ़ी असांजी ज़िंदगी में जेकी शयूं लागू आहिनि उन मां उन मर्ज़ खे ॻोल्हे सघिजे थो। मिसाल, घटि निंड करण, ऐं निंड घटि करण सां डिप्रेशन में बि वाधि जो ख़तरो थींदो आहे, ऐं काफ़ी जेको नशो इस्तेमाल करण सां, जंहिंमें सिगरेट छिकण ऐं घणेई अरसे खां उहा ॻाल्हि कई वञे थी त सिगरेट छिकण जे करे बि माण्हू डिप्रेशन जो शिकार थिए थो, ऐं इंटरनेट ते घणो वेहण, जदीद दौर में नौजवान इंटरनेट ते, फेसबुक ते ऐं मोबाइल जो घणो इस्तेमाल करण सां बि, जेके चीटिंग कनि था मोबाइल ते, उन सां बि पंहिंजी सॼी राति, सॼो ॾींहुं, ऐं काफ़ी मोबाइल ते जेके गेमियूं अची वियूं आहिनि, ख़ासि करे नौजवान नंढड़ा ॿार इहे जेके आहिनि, पोइ बाद में इहे डिप्रेशन जा मरीज़ थी वेंदा। त असांजी गुज़ारिश इहा आहे त पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे नौजवाननि खे एहतियात करायो ऐं कोशिशि करे पंहिंजो टाइम सां आराम कनि, पंहिंजी महिनत कनि, ऐं नशे जा आदि न थियनि ऐं घणो मोबाइल जा आदि न थियनि, त इन मसइले खां बची सघनि था।

0: सचल की सर मस्त धरती।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन बनाने वालों की फखरिया पेशकश?
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
9: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
9: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
8: 0331252576।
9: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: इट्स टाइम टू कम फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियो हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
4: कोई भी राबतो ना हिन कंदा उन में उनके वो तमाम घणो नुकसान थींदो आहे पर जे कॾहिं उनजी थोड़ी फीस हूंदी कंहिं बि ज़रई महर जी त असांखे उहो वॾो फ़ाइदो पहुचंदो उहो सॼो असांखे तरीक़ेकार ॿुधाईंदो असांखे उन मेडिसन जो नालो ॿुधाईंदो असांखे उन दवा स्प्रे जो नालो ॿुधाईंदो त असां इस्तेमालु कंदासीं त असांखे घणो फ़ाइदो पवंदो ऐं जेके मालवंत माण्हू आहिनि जिन वटि माल आहे ढोर ढगा आहिनि ऐं पखी धारनि था उन में बि असांजी मेडिसन इस्तेमालु थींदी आहे पर उहा बि असां कंहिं न कंहिं स्टोर तां वञी करे जेके बि असांजा जानवरनि जा स्टोर आहिनि दवाऊं उते पयूं आहिनि त असां उन डॉक्टर सां मुलाक़ात न कंदासीं उन खे न ॾिसंदासीं त असांजे हिन पखीअ खे कहिड़ी तकलीफ़ आहे असांजे हिन जानवर खे कहिड़ी तकलीफ़ आहे त असां ईअं बसि पाण दवाऊं वठी अचे माल खे खाराईंदासीं पर माल हेॾो महांगो माल आहे लखनि जे रक़म में हिन वक़्तु माल विकिरो थिए थो पर असांजो उहो बीमार थी थो वञे या असां उन खे ज़बे करे छॾींदा आहियूं या असां उहो माल मरी वेंदो आहे नुक़सान पवंदो आहे पर महिरबानी करे सेल्फ मेडिकेशन न कयो पंहिंजो पाण कंहिं बि मेडिकल स्टोर सां दवा न वठो जेकॾहिं असांखे थोरो बि बुखार निकिरंदो खंघि थींदी निमोनिया थींदी बहरहाल मथे में सूरु पवंदो पेट में सूरु पवंदो असां वञी स्टोर जो पासो वठंदासीं अबा हीअ तकलीफ़ असांखे हीअ दवा ॾे ख़ुदा रा ईअं न कयो कोशिशि कयो पंहिंजे वेझे कंहिं सुठे डॉक्टर सां राब्तो कयो पंहिंजे वेझे कंहिं सरकारी या नीम सरकारी कंहिं हॉस्पिटल में वञो तमामु बहितरीन सुठा डॉक्टर वेठा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी तबियत ॾेखारे तव्हां मेडिसन वठो पंहिंजो पाण जी सिहत खे तव्हां सिहत आब कयो कोशिश कयो त जेका पाण सेल्फ मेडिकेशन कयूं था मेडिकल स्टोर दवा वठंदा इन खां पाण खे बचायो त पंहिंजी सिहत पंहिंजा फसल पंहिंजो मालमता पंहिंजो जेको आहे सो फसल बहितर रहंदा।

जी साईं मुंहिंजा जेको असांजो सवाल हो जेका असांजी गुजारत हुई उनखे पाण सिधो कंदासीं त उनजो सही जवाब कहिड़ो आहे त उनखे सिधो ईअं कंदासीं सुबुह साण सजणनि माना हिकिड़ो जेको सवाल जो सही जवाब आहे उहो आहे रोंबो यानि अक्सर त रोंबो बसरनि जो बि थींदो आहे काफ़ी जेके सब्जियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो बि रोंबो थींदो आहे बहरहाल जेको बि रोंबो थींदो आहे उन में रोंबे में पोएं पेर वञिबो आहे पर हिन वक़्तु असांजे सिंध जे जेके इलाइक़ा आहिनि जेके ज़िला आहिनि ख़ासि करे कश्मीर ज़िलो जे कबा ज़िलो शिकारपुर ज़िलो ऐं लाड़काणो ज़िलो कंबर शिदादकोट ज़िलो ऐं दादू ज़िलो बाक़ी कुझु ज़िलनि में फसल लही चुको आहे जीअं असां ईअं खणी चऊं त सांगड़ आहे पंहिंजो बदीन आहे ठटो आहे त उते सारनि जो फसल लही चुको आहे पर असांजे इलाइक़े में हिन वक़्तु जेको सारनि जो रोंबो शुरू आहे फसल जी पोखाई थिए पई त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु माना जेके असांजा हारी आहिनि जेके मज़दूर आहिनि उहे पोएं पहिरें पंधु कंदा आहिनि सुबुह जो सवेर इहे असांजा सजण आहिनि मारूअड़ आहिनि सांगीड़ आहिनि इहे सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु ऐं पंहिंजो रोंबो बि कंदा आहिनि पोएं पहिरें पंधु बि कंदा आहिनि हणण कण हथनि सां सारो ॾींहुं समंदु हथनि सां पंहिंजो रोंबो कंदा आहिनि उन में मरायूं जेके आहिनि ॿिज जे हथीअ मां मरायूं करे हणंदा वेंदा आहिनि त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु इहे पोएं पहिरें वेंदा आहिनि पंधु कंदा हणण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंदु रोंबो बि कंदा आहिनि ऐं अलाह अलाह बि कंदा आहिनि त जेको आहे सो टाइम पूरो थिए त असां ॿाहिरि निकिरूं छो त पाणी बि हूंदो आहे पर मथां सिज जी तपश बि हूंदी आहे गर्मी बि हूंदी आहे त उन में ईअं आहे त सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु हणण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंदु ऐं हथनि सां रोंबो बि कनि पिया अलाह अलाह बि कनि पिया हाणे कासम खणी कंधु निहारनि निमाणनि निणनि सां मथे ॾिसनि पिया सिज ॾे त अलाह करे टाइम थिए त जेका असांजो सिज पुठी ते पए पियो मथे ते सिज पए पियो त महल सां घर वञूं अलाह खे बि यादि कनि पिया रोंबो बि कनि पिया हथनि सां हण बि कनि पिया ऐं पोएं पेरे वञनि पिया त इन जो सही जवाबु आहे रोंबो या रोंबी कहिड़े बि सब्ज़ीअ जी कहिड़े बि क़िस्म जी रोंबी थिए थी या कहिड़े क़िस्म जो रोंबो थिए थो उहो पोएं पेर वञिबो आहे त असुलु जेको सही जवाबु आहे उहो आहे रोंबो त इन जो जेको सवालु हुयो सुबुह साण सजणनि कयो पोएं पहिरें पंधु हणण कयूं हथनि सां सारो ॾींहुं समंदु त साईं मुंहिंजा असांजो जिन बि दोस्तनि सही जवाबु ॾिना काफ़ी फेसबुक ते बि असांजे दोस्तनि पंहिंजो नाला मोकिलिया आहिनि पर कंहिं बि कोशिशि न कई आहे कंहिं बि उको धोको न हयो आहे ऐं जेके असांजे इनबॉक्स में जवाब आया आहिनि उन दोस्तनि बि कंहिं बि कोशिशि न कई कंहिं बि उको धोको न हयो पर बिल्कुलु नाला तमामु घणा आया फोन कॉल ते बि नाला तमामु घणा आया कंहिं बि सही जवाबु ॾिनो जिन दोस्तनि सही जवाबु ॾिनो आहे उन में असांजो हाजी सोरा मंगरियो ॻोठु सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां लाड़काणो ज़िलो तमामु बहितरीन दोस्त जवाबु ॾिनो ऐं पहिरें नंबर ते असां उनखे आणियूं पिया ऐं उन खां बाद में ॿिए नंबर ते असांजो गुलाब खान कुंभर ॻोठु कंगन खां उहो बि लाड़काणो ज़िलो उन बि सही जवाबु ॾिनो आहे ऐं फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां उन बि तमामु बहितरीन तरीक़े सां तरतीबवार असांखे जेको जवाबु ॾिनो आहे तमामु सुहिणे अंदाज़ सां सॼो तरीक़ो असांखे ॿुधाई ऐं इन्हनि टिन्ही दोस्तनि सही जवाबु ॾिनो आहे सही तरीक़े सां हुन तशरीह कई आहे जवाबु बिल्कुलु सही न आहे अताला खान ईसा खिलवी जो ख़ूबसूरत नगमो आहे इन टिन्ही दोस्तनि जे नाम

जी समय अताला ईसा खेल जी खोसर नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पजे पे पजण ते हयाती बखैर हयाती रही तव्हां सां जरूर मुलाकात थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत लाइ जुणे जो के ॾींदा इजाज़त अलाह निकाह।

अमेरिका जा ईरान ते नई रात वे हमला जारी अमेरिकी फौज के सेंटकॉम जो चवण है ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स फिदाई दिफाई ड्रोन्स लॉन्च साइट्स के निशानों बनाए वो ईरानी मीडिया मूजिब तब्रीज चाबहार सिरक हरमुजगान बुशहर ए कोनाक में हमला किया गया बाजार इनकलाब पारा अबना हरमुज में ब तेल जहाज जा तबाह करने की दावा उदन के अकबा एयरपोर्ट से अमेरिकी जहाज से बैलिस्टिक मिजाइल से हमलो किया वो शाम के इलाके अल्तनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर से भी हमले की दावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है अमेरिकी फौज रात ईरान से शदीद हमला किया ईरान से हमला अमेरिकी फौजन के मारण जो रद्द अमल है फौजन के माजी वजन से ढो दुख थो है माजी वेल अमेरिकी फौजी इन मकसद के लिए वेढ़ी रहा हुआ तो ईरान एटमी हथियार न रखी सके ईरान के धमकी दई सके थी न लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असराए थी आलमी ताकत तौर उभरियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चवा है ईरान अगु का वधिक मजबूत है ईरानी रचा थियल यूरेनियम विक्रो न थो करे सके असी दिफाई चैम्पियन स्पेन दिफाई चैम्पियन अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में बुढ़ी एक शिकस्त दई आलमी चैम्पियन बनी वो महादंगल में स्पेन के रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम के 16 साल बाद बो भेरो चैम्पियन बनाए छो मैच जो फैसला है तो गोल इजाफी वक्त की बी हाफ में थो अर्जेंटाइन के गोलकीपर मार्टिनेज शानदार कारकर्दगी जो मुजाहरों कदे केतरा ही यकीनी गोल्स बचाया वर्ल्ड कप के 8 मैच दौरान का भी टीम स्पेन खिलाफ बरतरी हासिल न कर सकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन की पाथे टीम की ट्रॉफी पेश कई अर्जेंटीना के रांदीगर के चांदी जहा तमगा दिना वह ग्राउंड में स्पेन के रांदीगर जो जश्न वर्ल्ड कप में शिकस्त अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़कल आड़े वेठो

0: पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाराई जो रुझान 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स की घटताई रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट्स से डिठो वो उडेरो ला रिसेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल न थी सकिया ट्रेन्स मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया वा मालगाड़ी के ट्रेक हटाएं रेलवे ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों जारी कराकुरम तेजगाम ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन्स मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल ट्रेन्स की अचवन 24 कलाक तीन मुअत्तल रही फैजगंज में वधंदर बदमनी खिलाफ बहरान हाईवे बंद करे धरणो पुलिस खिलाफ नारेबाजी वकीलन वापारन कौम परस्तन कारकुनन शहरन रोड ते शामियान हणी धरणो हणी छो ट्रैफिक मुअत्तल थी वही अगवाणन जो चवण है फैजगंज जो अमन तबाह थी वो है रोजानो फुर ए चोरी जा वाकया पेश अची रहा है पुलिस बदमनी ते जाब्तो आनन में मुकम्मल नाकाम थी वही है रहवासी गैर महफूज आन मुख्तलिफ इलाकन में फुरल गाड़ियों ए सामान वापस कराए अमन बहाल कराए वे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GAFM 90.4
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर शेयरिंग इट टू रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। अभी कैसे हैं आप? आई होप चुकी जी जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। और अगर हम प्रोग्राम में वक्त की बात करते हैं तो 11:18 पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो

लगता है, बट अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफल जी खुदा खैर मौजूद और तवक्कुल खुदा।

हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं, सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले

इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना जो कि हम इंक्लूड करने वाले हैं वो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसत आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. और हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं डाडा सुर लगाओ गाना सुनाओ और सुर लगाओ गाना सुनाओ में फर्स्ट कॉलर हम चेक करेंगे कौन होंगे कॉलर 03000113488 के ऊपर. हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी कौन.
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई बात कर रहे हैं. हेलो आवाज आ रही है मेरी.
1: आवाज नहीं आ रही आपकी.
0: मेरी आवाज नहीं आ रही. हेलो
1: हेलो
0: ओके जी ये क्या इशू आ गया है इसको हम चेक करेंगे. ओके जी हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम आवाज आ रही है मेरी.
1: जी मैम अभी आ रही है.
0: अभी आ रही है तो मुझे बताएं कि सागर भाई गाना सुनाएंगे.
1: जी मैम गाना सुना गजल सुनाऊंगा आपको.
0: ओके सुना दे.
1: ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें सलाम कर दो. ये झुकी झुकी निगाहें दिल में सलाम कर दो. यही अपनी सुबह कर दो. यही अपनी शाम कर दो. ये झुकी झुकी निगाहें दिल में सलाम कर दो. ये झुकी झुकी निगाहें.
0: ओके जी किसी को डेडिकेट करना है.
1: जी मैम दोस्त करे दोस्त करे मेरे साथ उसको डेडिकेट करना है.
0: कर दी
1: शौकत मीरानी
0: जल्दी जल्दी
1: बस जल्दी जल्दी तो नहीं बस नहीं करना
0: डेडिकेट. अरे अरे कर दें आप तो नाराज हो गए.
1: नहीं बाबा मैं नाराज नहीं होता मेरी औकात है नाराज होने की.
0: नहीं नहीं बिल्कुल आप हो सकते हैं ऐसी कैसी बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी. और ये कैसी बात कर दी आपने बड़ी अजीब सी. तो ये रहा आपका गाना और इसको हम सुनेंगे एंजॉय करेंगे.

0: वालेकुम सिस्टर।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं भाई?
0: आपका भाई नूर हुसैन सलाम बद्दीन। सिस्टर क्या हाल, ठीक हो?
1: जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं?
0: बस क्या, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है।
1: ओके, गाना सुनाएंगे?
0: गाना है उसका शमन मिराली का,
1: सुना दे।
0: नथो विसरी मुखा नथो विसरी,
1: ये तो उस दिन भी सुनाया था ना आपने, उस दिन भी सुनाया था ना आपने। अब गाना चेंज करें ना,
0: गाना चेंज करूं?
1: हाँ गाना चेंज करें ना।
0: हो सके तो मेरा एक गाना।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू. फिलहाल हम आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ. और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से.
1: बेटी वफा अब्दुल वहीद जतो ही बात कर रहा हूँ. बेटी शाबिल से तालुक सकर है. बेटी रुखसार.
0: ओके जबरदस्त. मुझे बताए गाना कौन सा सुनाएंगे.
1: बिल्कुल सुनाएंगे बाजी. ता हसीन जिंदगी की गुजरी वही या का.
0: हेलो. ओके जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है और ये क्यों हुई है आई लिटरली डोंट नो. लेकिन ये है कि हम एक और गाने की तरफ भी चलेंगे और इसी के साथ हम प्ले नहीं प्ले क्या करेंगे, मैसेजेस और कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे. ठीक है जी. सो हियर कम्स अली जफर.
2: वेयर इज द मनी.

आओगी जी, हम मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनी डिले. हमें बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो चुके हैं जी. नजीर खोसो ने हमें कमेंट कर दिया है और नजीर खोसो कहते हैं कि ये सोबरपुर बलोचिस्तान से हमें सुन रहे हैं. अनवर अली हमें सुन रहे हैं, कहते हैं योर शो इज अ बिग ओ ओ. अच्छा इसके अलावा अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक. और अब्दुल रजाक वंस अगेन. और इसके अलावा अली अकबर बिरोही हमें सुन रहे हैं और हाले सुल्तान हमें सुन रही है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम हाले सुल्तान. इसके अलावा अली अकबर बिरोही वंस अगेन, हाले सुल्तान कहती है स्वीट आर जी आई एम लिसनिंग योर शो, प्यार है. थैंक यू सो मच हाले सुल्तान. आशी खास के लिए हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि प्रोग्राम बुधी राय आयो अहमद मुगल जो गीत बुधरायो. ओके.

अच्छा आज का टंग ट्विस्टर भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ. आज का जो टंग ट्विस्टर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि आपने कह के दिखाना है मुझे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, ये कहना है जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, बहुत सिंपल सा, अगर समझ के सुनेंगे तो बोलने में आसानी होगी. तो ये है और इसी के साथ हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे एक और सॉन्ग जो कि हम कर भी रहे हैं. और मेरे ख्याल से ये जो हमने कर दिया है ये हमने करना नहीं था लेकिन ये हो गया है. अब ऐसा करेंगे कि हम एक और सॉन्ग की तरफ चलेंगे और वो जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसी के साथ हम जाएंगे. न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों के बाद वापस आएंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: धमकी ॾेई सघे थी न लालच कुझु नुक़सान बावजूद ईरान असायती आलमी ताक़त तौर उभरियो ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ईरान अॻु खां वधीक मज़बूत थी उभरियो आहे ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकिरो नथो करे सघिजे स्पेन दिफ़ाई चैम्पियन अर्जेंटीना खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में ॿुड़ी जे मुक़ाबले में हिक तां शिकस्त ॾेई आलमी चैम्पियन बणिजी वियो महादंगल में स्पेन जे रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम खे 16 सालनि खां पोइ ॿियों भेरो चैम्पियन बणाए छॾियो मैच जो फैसलाइतो गोल इज़ाफ़ी वक़्त जे ॿिए हाफ़ में थियो अर्जेंटीना जे गोलकीपर मार्टिनिस शानदार कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कंदे केतिरा ई यकीनी गोल्स बचाया वर्ल्ड कप जे 8 मैच दौरान का बि टीम स्पेन ख़िलाफ़ बरतरी हासिल न करे सघी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन जी फाते टीम खे ट्रॉफी पेश कई अर्जेंटीना जे रांदीगरनि खे चांदी जा तमगा
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आकर मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैसेजेस कमेंट्स और कॉल्स के थ्रू. कॉल्स आप लोगों की हम इंटरटेन करेंगे. हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बोलो तो माने. और आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह है कि जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, ये कहना है और देखते हैं कि कौन कह पाता है आज का टंग ट्विस्टर. हम प्ले करेंगे गाना और गाने के साथ टंग ट्विस्टर. और जी सो गाना मेरे पास मौजूद है जी बिलाल सईद की आवाज में. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और इसी को सुनते सुनते हम आप लोगों की कॉल्स को भी इंटरटेन करेंगे.

0: सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं. गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, आप पी रुखसार क्या हाल है? आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, उसे विश कर दें. हैप्पी बर्थडे टू यू ततहीर, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज हो. ठीक है, तो विश कर दिया और करना है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू. ठीक है,
1: ज्यादा क्या तुझे समझा.
0: अच्छा, इसके अलावा जी हमें मैसेजेस बहुत सारे रिसीव.

सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आपकी रुखसार, क्या हाल है? आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, उसे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू ततहीर, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज हो। ठीक है, तो विश कर दिया।

प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करते ही जाएंगे, जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आपकी रुखसार, क्या हाल है? आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, उसे विश कर दे। हैप्पी बर्थडे टू यू ततहीर, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज हो। ठीक है, तो विश कर दिया, और करना है।

करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मेरी बलूच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आपकी रुखसार क्या हाल है, आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, उसे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू ततहीर, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

Okay, you welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और आपका और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ आते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के जो कि हमें रिसीव होते जा रहे हैं. हाली सुल्तान के बहुत सारे कमेंट आए हैं. हाली सुल्तान सुन रही हैं, थैंक यू हाली सुल्तान. और गुलाम मोहम्मद मरी ने भी थैंक यू कहा है, किस बात का थैंक यू. और नियाज हुसैन मलिक हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्स हम आप लोगों की एंटरटेन करेंगे और हमारा बोलो तो माने सेगमेंट जो कि स्टिल हम कंटिन्यू करेंगे. सो जी नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी चलेंगे और बैक टू बैक बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद हैं. और नींद ना आए तेरे बिना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मजाक आप मजाक समझती हो? क्या मजाक समझती हूँ? कौन सी बात है जिसको मैं मजाक समझती हूँ? आपका मेरा मजाक है नहीं ना? तो फिर

आगे गाना चेंज करेंगे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वी वी ब्यूटीफुल बाय बिलाल सईद. क्या खूबसूरत लिरिक्स हैं इस गाने के. इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: It's time to commercial break.
1: कोई तुम भी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सुना तो करी
2: यहाँ वाकई फायदे वाली है सा
1: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासर थे हंदते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी
2: सिर्फ जेल सूर लाए
1: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई जेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की आवाज
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM ETH नेटवर्क ते
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252578
7: जी हाँ 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़

अमन मनी बलोच कहते हैं कि बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू. अच्छा, बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू. ठीक हो गया जी, बर्थडे विश भी हो गया. और इसके अलावा जी, आशी खास के लिए को प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच. और ये कुछ कॉमेंट जो कि अब तक के बहुत सारे लोग रह चुके थे उनके अब इंक्लूड हो चुके हैं जी. और हमें ज्वाइन किया है जी सफदर बलोच ने मोरो से, कहते हैं आप किसी का मैसेज पढ़ना, किसी का मैसेज पढ़ना मतलब ओके जी, मैसेज आपका मैंने पढ़ लिया है, थैंक यू सो मच. और किसी का मैसेज मतलब आपका मैसेज हमने पढ़ लिया है और आगे मिसिंग पार्ट है. और इसके अलावा जी, गाना हमारा पूरा खत्म हो चुका है. मैं ढूंढ रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि बैकग्राउंड में कुछ चल क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं चल रहा कि हम गाना चेंज करेंगे.

लास्ट वीक किसी ने कहा था प्रोग्राम में कि बिलाल सईद का खैर मंगदी प्ले करते हैं और हमने किया नहीं था शायद, सो अभी हम प्ले कर रहे हैं और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजी. सुना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरी करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजी रुखसार साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

Available now on iTunes.

0: It's 1 p.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez Aram, Mahasaj
3: Fazal. Missiles and drones launch sites ke nishano banaye hue. Irani media mujib Tabriz, Chabahar, Sirak, Hormuzgan, Bushehr and Konark mein hamla kiya gaya. American Sadr Trump jo chawara hai Iran te hamla American faujin ke maran jo radde amal hai. Faujin je maadi vanjan te daadho dukh thiyo hai. Maadi vel American fauji in maqsad de lai vidhi raha hua te Iran atomic hathiyar na rakhi sake. अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जा खिते में मौजूद अमेरिकी फौजी अदन ते हमला पासदारन इंकलाब चे वाहिद ऑपरेशन नसरत ब जे 21 मरले में उदन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट ए P-8 कमांडन जहाजन के निशानो बनायो कुवैत जे अलील सालम अमेरिकी फदाई अड्डे ते ड्रोन हमलो कयो वयो रेडार गोदाम ए MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया वया अमेरिकी कार्रवाई जारी रहने ताई अब्न हरबुज महफूज न रहंदो पासदारन इंकलाब पारा अब्न हरबुज में ब तेल जा जहाज तबाह करण ए शाम के इलाके अल्तनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर ते भी हमले की दावा ईरानी हमलन सबब पानी साफ करण वाले प्लांट समेत शहर हंधन के नुकसान पहुंचो कैनेडा की परदेही वजीर ए ईरानी घरू वजीर अज पाकिस्तान जो दौरो कंदा ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर जो खास पैगाम खणी अज पाकिस्तान पहुंचो वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए वफाकी वजीरन से मुलाकातू कंदो नायब वजीर आजम इसहाक डार ए अनीता आनंद विच में भी वफदन के सतह से गालू थी ईरान के न धमकी दई सके थी नई लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असरायती आलमी ताकत तौर उभरियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराकची चयो है ईरान अगू का मजबूत थी उभरियो है ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकरो नथो कर सके स्पेन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में बुड़िए के मुकाबले में एक तरह शिकस्त दई आलमी चैंपियन बन वो महादंगल में स्पेन के रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम के 16 साल बो भेरों आलमी चैंपियन बनाए छो मैच जो फैसलाए तो गोल इजाफी वक्त के बे हाफ में थो अर्जेंटाइन के गोलकीपर मार्टिनेस शानदार कारकर्दगी जो मुजाहरों कन्दे केतरा यकीनी गोल्स बचाया वर्ल्ड कप के 8 मैच दौरान का भी टीम स्पेन खिलाफ बरतरी हासिल न कर सकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन की फाते टीम के ट्रॉफी पेश कई अर्जेंटीना के रांदीगरन के चांदी जा तमगा दिना वा ग्राउंड में स्पेन के रांदीगरन जो जशन वर्ल्ड कप में शिकस्त अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो

पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाड़ाई, 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट की घटताई रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट से डिठो वो। उलूरुलाल स्टेशन से मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल नहीं सकिया, ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल, मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया वा, मालगाड़ी के ट्रेक तक हटाने ए रेलवे ट्रैफिक बहाल करने जो कोशिशों जारी, कराकोरम तेजगांव ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल, ट्रेन की अचवन 24 कलाक तई मुअत्तल रही। कुंभ वेझो पढ़ियल लारी पुरस्कार तौर गोलियों लगण सबब बाजी वही, नौजवान जख्मी, गोठ छतल कलोड़ो में 19 महीने की रजियाद आल अब्दुल समद कलोड़ो हयाती विजाए वेठी, फायरिंग के नतीजे में अली मदद कलोड़ो जख्मी थी पो, लाश ए जख्मी के अस्पताल मुंतकिल करो। वाक्य बाबत कतुल तोड़े खुदकुशी जा चुबोल जांच कर रहा आयो। सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज, मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा, घोटके में 10 रवाह के आबादगार सीधा डायरेक्टर के ऑफिस अगर एहतजाजी मुजाहरो कर, कैरब नाथन शाह में हाल ने आबादगार केटीएन न्यूज के ऑफिस अगर निठण उस में धरणो हो, दखण में निमशाख के आबादगार पानी की खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो कर, सन में शाह आवेस कैनाल के आबादगार एहतजाजी रैली कढ़ी, लाखा लिंक रोड से धरणो हणी छो, आबादगार का चवण है आपाशी मलदार पानी मुंड के आबादगार के विक्रो कर रहा है, जमीन के पानी न मिलने सबब लखे रुपये नुकसान थी रो है, नोटिस वी पानी डाय वे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: इट्स टाइम टू कवरेज।
1: आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द, सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ
1: जी आसान से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान। सिर्फ GFM 88 नेटवर्क दे।
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के सिमटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अच्छी पसी है बन के मोहब्बत का सास।
5: कैसे बढ़ेगी या फिर किस तरह आप लोगों का हुसन जो है वो बरकरार रहेगा, तो ये आप लोगों को जरा सा समझा देते हैं।

बिल्कुल जी। सो यहाँ पर जरा बात की जाएगी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी भी जगह से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट का इंतखाब किया गया है। हर तरह के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, एक्नी से परेशान हैं, साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, लोशन लगाने वाले लोग हैं, तो जनाब जितनी भी अगर आपकी स्किन से रिलेटेड मसले हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आप लोगों के लिए भी है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल। तो यहाँ पर आज हम स्टार्टिंग करेंगे जी व्हाइट एज लवली क्रीम से, क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम वो क्रीम होती है भाई जिस क्रीम की आप सब लोगों को जरूरत होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप मेकअप की जगह जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ऐसा सीन बना लें कि आप लोगों को ना गर्मियों में कोई मेकअप नहीं लगा पाता, तो गर्मियों में आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद हो जिसे आप बस लगाएं, चुटकियों में रेडी हो जाएं। और व्हाइट एज लवली क्रीम की अगर आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात बताऊं तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन्स का फार्मूला है, जिसके अंदर 30 वाइटामिन्स के कैप्सूल्स एड की गई हैं, और उसके अलावा जो है इसके अंदर आप लोगों को वाइटामिन डी मिलेगा, वाइटामिन सी मिलेगा, वाइटामिन ई मिलेगा, वाइटामिन बी थ्री मिलेगा। रोजाना सुबह और रात मतलब आप इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुनासिब मकदार अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आप लोगों के चेहरे की स्किन जो है ना वो ग्लो करने लग जाती है, आप लोगों को जो है ना वो निखार मिलना स्टार्ट हो जाता है, और

पे बस आप जो है ना व्हाइट आइस लवली क्रीम को अपने चेहरे पर थोड़ा सा मिकदार लेकर लगा लेंगे. उसके बाद आपने कहीं जाना है, कोई जॉब कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस व्हाइट आइस लवली क्रीम लगाओ और चुटकियों में रेडी हो जाओ. उसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा है, एक्नी ने आपको परेशान कर रखा है, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की अगर बात की जाए तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी का खात्मा है बल्कि एक्नी से रिलेटेड बहुत सारे जो मसले होते हैं ना उनका भी जड़ से खात्मा कर देगा. तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का जो ट्यूब है ना अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर सब जड़ी बूटियां ऐड की गई है. आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ब्लैक पॉट्स हो, एक्स्ट्रा ऑयल हो, एक्नी किसी भी तरह का हो, हर तरह से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को जो है वो क्लियर बनाता है, बेदाग बनाता है, सूरत बना देता है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है. तो अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं तो चाहती हूँ भाई लाजमी आप लगा कर देखिएगा. इतना अच्छा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल आप गर्मियों में कर सकते हैं, सर्दियों में कर सकते हैं और लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे, टीनेजर्स खास करके, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी निकल आते हैं. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के तरीकेकार भी बहुत ज्यादा आसान है कि आप इसे सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगा सकते हैं. अगर ऐसा है कि एक्नी बहुत ज्यादा ही आके फेस पर एक्नी का मसला बहुत ज्यादा है तो आप तीन मर्तबा लगा लीजिए, कोई मसले की बात ही नहीं है. ओके, लगाने के तरीकेकार ये होंगे कि जहाँ पर आपके चेहरे पर कोई निशान हो, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है या फिर एक्नी हो तो वहाँ वहाँ पर आप लगाएंगे. लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, अच्छे से हाथों को क्लीन कीजिए, उसके बाद आप अपने चेहरे पर जो है ना वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को अप्लाई कर दीजिए. वैसे भी कहते हैं कि जिनके चेहरे पर एक्नीज होती है ना वो बार बार आपने ना ऐसा करना है कि अपने फेस पर हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से जो है ना अपने चेहरे को बार बार टच करते रहते हैं आपको एक्नी पहले से बहुत ज्यादा होते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी एक्नी जो ना वो और ज्यादा खराब हो जाती है और ज्यादा हो जाते हैं फेस पर. तो इन चीजों से थोड़ा गुरेज किया करें, हाथ फेस पर बार बार मत लगाया करें और उसके अलावा जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी लगाया करें. और अगर साथ में आप कोई भी अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है और आपके पास व्हाइट एश का फेस वॉश भी मौजूद है जो कि भाई विटामिन सी से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस वॉश है जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई भाई सिद्रा सही कह रही थी. और उसके अलावा व्हाइट एश लवली क्रीम है और जी ये तो आप जानते हैं. और साथ साथ अगर हम यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की बात करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो अगर आप कोई नाइट क्रीम अच्छी वाली लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है. तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाइए जो कि आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत बना देगी, आपके चेहरे के मसाइल को दूर कर देगी और आपको हमेशा जो है ना खूबसूरत बना देगी. और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं कि हमारे गोठ में, हमारे सिटी में, हमारे करीबी जनरल स्टोर पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों तो उसके लिए आप नंबर्स जो आपको बताऊंगी जरा वो डायल कीजिएगा. पहले भाई आप लोगों को एक नंबर बताती थी लेकिन अब हमारे पास जो ना नंबर्स का जरा इजाफा हो चुका है, तो आप लोग अगर नंबर्स जो है वो डायल करना चाहते हैं तो अगर आप सखर में जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सखर में नंबर डायल करेंगे और सखर वाली ऑडियंस जो है वो हमारे साथ मौजूद है तो आप सखर वालों के लिए नंबर होगा 03-12-50-25-907. उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, बस सारे लोग आपको जो नंबर भी सूट करे, जो नंबर भी आप नोट कर लें, वो नंबर आप डायल कर सकते हैं. तो बाकी जो नंबर हैं वो है 03-32-73-84-309. बिल्कुल जी 03-27-38-43-09 ये नंबर्स आप डायल कीजिएगा, क्योंकि महर इरफान सियाल साहब जो हैं वो उमरा पर गए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई लिसनर्स को आप बोल दें कि वो जो है ना मेरे नंबर पर नहीं, ये जो दूसरी नंबर आपको बताए जा रहे हैं इसके ऊपर रابطہ करें और इस नंबर्स के ऊपर रابطہ करके उनसे मालूमात ले लें, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं. और महर इरफान

एक लड़की के लिए इतना ही काफी है भाई। बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुन रहे हो। साथ प्रोग्राम है जी वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। और जनाब जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ना, कैसी कंजूसियां हैं ये। एक तो प्रोडक्ट नहीं ले रहे, दूसरा पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं कर रहे, अरे भाई कैसे चलेगा। ये मोहब्बतें दोनों तरफ से होनी चाहिए। साथ बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अनवर अली कहते हैं कि टॉपिक जो कोशिश करेगा वो कामयाब होगा और जो वो नाकाम होगा। ओके ओके जी, कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ है दादू सी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तथा खालिद कहते हैं कामयाब इंसान तब बनता है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे और नाकाम वो जो बस दूसरों पर क्रिटिसाइज करते रहे, खुद डोंट स्ट्रगल इन लाइफ। योर टॉपिक आंसर। ओके देखिए, मैंने तो बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं बन पाते है ना। उदास लड़की कहती है इस टॉपिक का जवाब बड़े लोग देंगे, हम बच्चे चुप करते हैं। अरे भाई और कितनी बच्ची बनोगी तुम। आने वाली थी भैया ले चले। आदिल कहते हैं कामयाब ऐ नाकाम इंसान में फर्क, नतीजे जो न सोच ऐ अमल जो आए। दुनिया की नजर में ऐसा समझू था ओगरी कहते हैं कामयाब इंसान ही मुश्किल आहे पर रस्तो निकरन, नाकाम इंसान मुश्किल आहे तह करे मां न करे सघंद से। कामयाब मानो मसलन के सबक समझे थो, नाकाम मानो उन के रुकावट समझे थो। आई बियो अमल जो फर्क आहे। ओके जी, बहुत एक लंबा सा चौड़ा आपने कमेंट कर दिया है और मतलब बात जो है वो आपने बिल्कुल सही कर दी है। सो क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपको। वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और लिखते हैं आदिल, वो जैसे गुड बॉय बोल दी फराज, खराब इंसान भी अच्छा बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। बिल्कुल जी, इस चीज के ऊपर मैं भी बिलीव करती हूँ। देखें बन गए हैं ना। अच्छा मुखलिस हाशिम सुमरो भाई हमारे साथ हैं, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और हैं जी हमारे साथ अमान मीनू, कहते हैं इट्स सो गुड, थैंक यू। अली मुर्तजा कहते हैं ओके जी ओके। मामा समान आपने टॉपिक के ऊपर बात कर दी है, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। दर्द दिल कहती है कैसी है चंदा, मैं ठीक हूँ आप बताएं प्यारी आप कैसी हैं। और दर्द दिल कहती है कभी कभी इंसान का मजबूत होना ये नहीं कि उसे तकलीफ नहीं होती, बल्कि ये होता है कि वो हर तकलीफ के बाद अपने दिल को अल्लाह के सुपर्द करना सीख लेता है। असल सुकून लोगों के बदल जाने में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने में होता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, तो मेरी की लग दी क्या ही ट्रैक था, बहुत खूबसूरत। एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, जरा हम सुनेंगे। मुमताज मलिक का गाना होने वाला है, चाचा तो के समझाया दस्त सही। ओके जी, गाना सुनेंगे और आपको बताएंगे। माँ भी छा छा तहां के समझाया बाबा, तहां की खूबसूरती किथे किथे लेके लाए, तहां जला केडा भला भला मार्केट में प्रोडक्ट अची वया, छा छा समझाया, समझो ही न था।

अच्छा मन तव्हां खे कंहिं शइ जी ख़बर ई कोन्हे का ईअं न कयो बाबा ईअं न कयो हाणे वॾा थी विया आहियो ऐं अञा ताईं अगरि तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु नाहे कयो त बाबा जल्दी इस्तेमालु कयो इहो बि लाज़मी पुछा कजो जीअं तव्हांखे आसानी थी वञे तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो उतां इज़ीली वठी अचो समुझो था

ना समझी यासी बाबा। हीजे का गाल है ना तुझे सामो तुझा तई मुझे सामो मोजा तई गाल थोड़ा टाइम थे वाकई ऐसा समझी वया हूं। एड़ा मानू खोड़ असा जी आसपास आए पासो करण घुर्जे ही है ना। It's 2 p.m.

शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जी इनाम मेमण, घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। सैयद मुराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविज़ अंसरनि खे का बि रियायत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं फतेहखोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना सुन रहे हैं। यहाँ पर एम अंसारी लिखते हैं कि हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, और कुछ को हम चुभते हैं सुई की नोक की तरह। आई ली और जो कहते हैं कि यासिर अलीशान अलीजा अलिशबा हिरा भी यू को सलाम और हेलो कह रही है। हेलो और सी और भी लोग हैं जिनमें आरिफा हैं, रिमशा हैं, उरूसा, फरहान, शकील का भी सलाम एंड हेलो। वालेकुम अस्सलाम एंड हेलो।

0: सिद्धार्थ आपने जो गाना बोला है ना वो थोड़ा सा इंडियन गाना है तो इसलिए नहीं लगा सकते. और कहते हैं वैसे आज एक
1: छोटी मोटी गाल हो
0: लगवा के ये रहेगी वो भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने गए हैं. तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए. दर्दी दिल आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू स्वीटी. सजाद हुसैन सुमरो हमारे साथ है. नदरी कहती है अगर वो अच्छा कहती हैं कि अरे यार वो सुना है ना गर्ल्स जितनी भी बड़ी हो जाएं बट वो हमेशा छोटी ही लगती हैं और हमसे छोटी ही रहेंगी. अच्छा हमेशा छोटी ही रहेंगी ऐसा क्यों भला, वो कभी ना कभी तो औरत बनेगी ना.

बिल्कुल जी, और आप भी परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती जनाब बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए ऐसा हुसैन जो हमेशा आपके साथ रहे, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में लीजिएगा डी स्किन फेस वॉश ताकि आपको मिले मुकम्मल हुस्न। ओके रिहान अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आबिद बिरोही हमें सुन रहे हैं, हेलो आबिद भाई। अच्छा शरीफ अहमद दिल लगारी हमारे साथ हैं, हाय। अनवर भाई आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहम्मद समान कहते हैं वीआईपी शो एंड उससे भी ब्यूटीफुल है, अच्छा जग मेरी बात करें। थैंक यू। गाना सुनिएगा।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाकर देखा जी, बताइए जरा हमें भी। और यहाँ पर शोनी कहती आप ही जान में वापस आ गई, आप ही कल वापस आई हो हम सब। चलिए जी, क्या बात है, आपकी छुट्टियाँ अभी तक चल रही है, एंजॉय करें भाई। और अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर, मेरे नजदीक सक्सेस का मतलब काबिलियत है, इंसान काबिल है तो सक्सेस उसके पीछे होती है, अगर काबिल नहीं तो वो सारी उम्र सक्सेस के पीछे भागते फिरते हैं। कह सकते हैं।

0: क्या बात है, आप हमारे साथ साथ मौजूद रहेंगे जी पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ है इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

ओके जी, सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वाइज एशियन डेज इन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था बिल्कुल जी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टेस्ट इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी या फिर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी हमें जरूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से लिसनर्स हैं वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और रमजान भाई, यदि हम आपको अच्छा कसीदा जो होता है ना मेरे भाई, मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाती हूँ, प्रोग्राम के बीच में नहीं लगाती, तो आप कसीदे की फरमाइश जो कर चुके हैं तो मैं आपका कसीदा कल आकर लगा दूंगी। अली शेर मरी भाई हमारे साथ, वालेकुम असलम। अली मुर्तजा कहते हैं कि मैं एक

यानी कि फुल एंजॉयमेंट चल रही है करें जी एंजॉय करिए। और यहाँ पर हमारे जाने का वक्त आ चुका है और निधि कहती हैं कि अरे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सो चलें जी मिलते हैं हम आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में। 5 बजे आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। ओके जी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। और जरा वो देखे जाते हैं ये चीज नहीं कि कितने लोग राजी होते हैं कितने नहीं, बस आप कोशिश करते रहें। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत, बड़ी मिलूं था 5 बजे। मानो ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कितने का गलती थी हुजे तो माजरत कंहिंखे अड़ो लव सुठो न लगो जेको मुंह गालायो हुजे तव्हांखे सुठो न लॻो हुन जे लाइ माजरत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाई लव यू ऑल एंड टेक केयर।

ईरान ऐं अमेरिका जा हिक ॿिए ते नाए ॾींहं बि शदीद हमला। अमेरिकी फज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खोजिस्तान ताईं पखिड़िजी वियो। महाशहर बंदर इमाम, तबरीज, बूशहर, हरमुज़गान, दासक, सेरक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान जो बि जवाबी वार। उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमेरिकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अलियल सालिम अमेरिकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार, गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमेरिका इराक में हिकु अमेरिकी फ़ौजीअ जे मारजण जी तसदीक करे छॾी।

ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमिनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रियन मुजिब इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि जे लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस CTD ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन। टिनि ॾींहनि खां जारी ऑपरेशन में हेल ताईं 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया। 3 लाश बि मिलिया। DPO बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह करे हथियार हथ कया विया। मंबाती बारकज़ई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वरी वज़ीर सैयद बराद अली शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमुन, घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। सैयद बराद अली शाह चयो त ॾोहनि में मुलविज़ अंसरनि खे का बि रियायत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भतेखोरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं वञनि।

सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाड़काणो में घड़ियासीन जे आबादगारनि जो इरीगेशन कॉम्पलेक्स में इंजीनियर जी ऑफिस ॿाहिरां धरणो। रोहड़ी में काज़ीवाह जे पुछड़ीअ जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। घोटीअ में ॾहरवाह जे आबादगारनि सीडा डायरेक्टर जी ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। खैरपुर नासन शाह में हारियुनि ऐं आबादगारनि केटीएन न्यूज़ जी ऑफिस अॻियां निठहण उस में धरणो हयो। दखण में निमशाख जे आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सन में शाह आवेस कैनाल जे आबादगारनि एहतजाजी रैली कढी लाखा लिंक रोड ते धरणो हणी छॾियो। आबादगारनि जो चवण आहे त आपाशी अमलदार पाणी मुंडे जे आबादगारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबबि लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी पाणी ॾियारियो वञे। सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरणो टें ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो चवण आहे त टिनि ॾींहनि खां सख़्त गर्मीअ में धरणो हणी वेठल आहियूं, पर जायज़ मुतालबा मंज़ूर न आहिनि कया विया। पाणी ॾियारण जे लाइ आबपाशी खाते जे चीफ इंजीनियर खे 24 कलाकनि जी मोहलत ॾिनी आहे। अॼु शाम ताईं मुतालबा तस्लीम न थिया त मुशावरत बाद बबलो बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असां रोड ब्लॉक करे आवाम खे तकलीफ़ ॾियण नथा चाहियूं, पर पाणीअ ख़ातिर एहतजाज कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो जीए FM 90.4।

0: एक शख्स गांव में, एक शख्स मकई के बुने हुए भुट्टे के दाने खा रहा था। खाते हुए एक दाना नीचे गिर गया। करीबी एक खड़ा हुआ मुर्गा दाने पर झपटा, लेकिन मुर्गे के पहुंचने से पहले ही उस शख्स ने दाना उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। दाना उसकी सांस की नाली में जा फंसा। उसे सांस लेने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई। वो बहुत से हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। आखिरकार हॉस्पिटल वालों ने इसके इलाज की हामी भर ली, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और ये बात तुम्हें लिखकर देना होगी। उसने लिखकर दे दिया। वैसे भी उसका जीना बहुत दुश्वार हो रहा था। घर वालों से मिलने के बहाने वो गांव वापस गया। जो ही घर में दाखिल हुआ, उसे जोरदार छींक आई, जिसके साथ ही दाना भी जो है अचानक उसकी जो है सांस की नाली से, यानी नाक के रास्ते जो है बाहर निकल के जा गिरा। पास वही मुर्गा खड़ा था और उसने वो दाना इत्मीनान से चुग लिया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और कोई कुछ भी कर ले, किसी दूसरे का रिस्क नहीं खा सकता। यह है रब्बे कायनात की तकसीम। वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामेन को जी मीर प्रकाश FM 88 के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आने अरे सब दोस्त हमारे, और जनाब आज का मौजूद गुफ्तगू भी आपको बताते चलें, क्योंकि आज इस टॉपिक के हवाले से होनी है आपसे हमारी और आपकी गुफ्तगू।
1: इंसाफ की चलती जरा धीरे से चलती है मगर चलती।
0: अरे जनाब आपने मुझे ये बताना है आज के
1: बहुत बारीक पिसता है।
0: जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, ये आपने मुझे बताना है। आपको जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, और ये बताने के लिए आपने जो है डायल करना है 03136615688 03136615688। आपको जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया। हमारी और आपकी लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस है। बहुत से तजुर्बात प्लस मुशाहदात होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है। तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आपने जिंदगी से सीखा है, ये बताने के लिए SMS के थ्रू अगर आप बताएंगे तो मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MPK, एक स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है अपना नाम और पैगाम, और SMS रवाना कर देना है 8881 पर। आपका SMS पहुंचेगा हम तक और ये मैसेज आपका हम अपने प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम करेंगे। अगर आप फेसबुक के जरिए, फेसबुक के कमेंट्स के थ्रू प्रोग्राम का प्यारा सा हिस्सा बनना चाहते हैं तो GFM88 के फेसबुक पेज पे आप हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पे अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। आपके फेसबुक कमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। चलते हैं अपने सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, कैसी हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र,
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यास्मीन क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छा टॉपिक है। आपकी मैंने जिंदगी में ये जो रहे वही सब है, किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए सिवाय अल्लाह ताला के।
0: सही, चले क्या कहेंगे सब सुनने वालों से?
2: सब सुनने वालों को मेरी तरफ से चार भरा सलाम। अंकल श्याम उमर शाह को भी बहुत बहुत सलाम, बहुत खुश है उन्होंने कॉल की थी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू सो मच।
2: अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे।
0: थैंक यू सो मच दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: एलोवेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

रिट्रीवर जो डॉग है सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। ये आम डॉग्स की बजाय गाय जैसी आवाज निकालता है। दिलचस्प बात ये इसे गाय जो है उनसे भी गैर मामूली लगाव है। जब वो गाय जो है इन्हें देखती है तो ये शाउट करने के बजाय उन्हीं की जबान में उससे बात करने लगते हैं। तो ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, इन्हें लाखों अफराद ने पसंद किया है। एक वायरल वीडियो में ये मादा जो है डॉग है ये गायों के सामने खड़ी होकर आवाजें निकालती है, जिस पर गाय भी हैरत से उसे उसी अंदाज में जवाब देती हैं। और ये वीडियो का प्यारा सा हिस्सा जो है ये उनकी जो कारा ओवेंस है उसने जो है सेव किया है। उन्होंने बताया कि इब्तदा में ये बहुत हैरान कन बात थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये आदत जो है मजीद नुमाया होती गई। 9 साल बाद भी लूसी पहले से ज्यादा जोश और बुलंद आवाज में हूं हूं करती है। यानी गाय की लैंग्वेज जो है वो उसने मतलब उन्हीं के साथ रहते हुए सीखी है और उन्हीं की लैंग्वेज में जो है गाय से बात करते हैं। तो जनाब जानवर जो होते हैं ना ये प्यार मोहब्बत के जो होते हैं कि इनसे अगर आप प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे ना तो ये आपको ऐसे ही हैरान करेंगे। दुनिया भर में हतमी उसूल राइज है, पहले इम्तिहान इसका नतीजा होता है। कुदरत का भी यही निजाम है। तमाम एक यूनिवर्सिटी ने हैरान कन फुर्तियों का मुजाहरा करते हुए नतीजे का ऐलान कर दिया, जिसका इम्तिहान अभी हुआ भी नहीं है। और ये मुनफरिद कारनामा भारत की रियासत जो है बिहार की एक यूनिवर्सिटी ने अंजाम दिया। जामा इंतजामिया की स्फूर्तियों ने तलबा और तालबात को हैरान परेशान कर दिया। बिहार में कायम वाहिद जय प्रकाश यूनिवर्सिटी में यह हैरान कन वाकया बीए के तीसरे सेमेस्टर के तालिब इल्म कंचन कुमार के साथ रहनुमा हुआ, जिसमें उसकी तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट इम्तिहान से कबल ही डीजी लॉकर पर अपलोड हो गई है। गुज़िश्ता रोज ये तालिब इल्म तीसरे सेमेस्टर के इम्तिहान का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कॉलेज पहुंचा। दस्तावेजात की जांच के दौरान जब इसने डीजी लॉकर खोला, वहां उसके नाम से बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 3 और ये मार्कशीट जो है ये पहले से मौजूद थी। और हैरतअंगेज बात यह है कि मार्कशीट में तालिब इल्म का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम दुरुस्त था और नतीजे में इसे पास भी करार दे दिया गया। और दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ने इसी तालिब इल्म का तीसरे सेमेस्टर का इम्तिहान फॉर्म बगैर किसी एतराज के कबूल कर लिया, मुकर्रा इम्तिहान की फीस भी वसूल कर ली है। अब तालिब इल्म कंफ्यूज है कि वो बकायदा उम्मीदवार के तौर पर इम्तिहान दे या फिर डीजी लॉकर पर मौजूद मार्कशीट को ही ऑफिशियल रिजल्ट तसव्वुर करे। मुतासर तालिब इल्म का कहना है डिजी लॉकर मरकजी हुकूमत का सरकारी डिजिटल दस्तावेजी प्लेटफॉर्म है। ऐसे में अगर वहां गलत मार्कशीट अपलोड होती है, सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं बल्कि तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा इंतहाई संगीन मामला है। और इस मामले पर जो है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से फिलहाल कोई सरकारी या पर्सनली बयान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, नहीं जारी किया गया है, जिसके बाद तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद और यूनिवर्सिटी में जो रजिस्टर तुलबा और तालबात हैं उनके वालदेन सख्त तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। वो यूनिवर्सिटी हुकाम से उस हवाले से वजाहत तलब कर रहे हैं। तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा जी, अभी पड़ोसी मुल्क की यह खबर यह भी है कि रियासत मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में बारिश की कमी, कमजोर मानसून के बाद शहरियों ने अनोखी रिवायत पर अमल करते हुए जो है डोंकीज यानी गधों को गुलाब जामुन खिलाए ताकि इलाके में बादल बरस सके। और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने जमा होकर गधों को मिठाई खिलाई और इस अनोखे मंजर ने वहां से गुजरने वाले लोगों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल करवा ली। इसी वजह से इनकी जो वीडियोस हैं वो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है शहर के बीचों बीच शहरी बारिश के देवता को खुश करने की कोशिश में गधों को गुलाब जामुन खिला रहे हैं। और ये रिवायत एक कदीम मकामी अकीदे पर मबनी है। ये इस वक्त की जाती है जब मानसून में ताखीर हो या बारिश जरूरत से कम हो, और इनका मानना है ये अलामती नजराना बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश कर सकता है, जिससे इलाके में अच्छी बारिशें होने की उम्मीद होती है। तो जनाब ये हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में। और हमारे यहाँ कम से कम मीरपुर खास सिटी का वेदर तो कदरे बेहतर है।
ہمارے شہر میں جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے، ماشاءاللہ سے اچھی اچھی سرد ہوائیں چل رہی ہیں، دوپہر کے ٹائم بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی والی ہوائیں نہیں ہیں فی الحال. اچھا جی، یہاں جو ہے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے، برطانیہ کے شہر ناٹنگم میں مختلف دکانوں سے قیمتی چاکلیٹس اور دیگر اشیاء چرانے والی 35 سالہ خاتون کو عدالت نے 16 ہفتوں کی قید سنا دی ہے. اور تحقیقات کے مطابق ملزمہ نے معروف ہوٹل سے چاکلیٹ ہوٹل سے تقریباً 851 پاؤنڈ مالیت کی لگژری چاکلیٹ چرائی، جبکہ بعد ازاں واٹر اسٹونز اسٹور سے بھی. او مائی گاڈ، اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اتنی ساری چاکلیٹ سنائی سی سی ٹی وی کیمرہ میں، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا موجود، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. اینی وے جناب، اچھی خاصی چاکلیٹس جو ہے چوری کرنے کے بعد گرفتاری کے وقت شارلیٹ جونز نے بہت ہی معصومیت کے ساتھ پولیس آفیسر سے سوال کیا، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا، پولیس کو مطلوب ہے، اس لیے آپ کو دیکھتے ہی گرفتار کیا جا رہا ہے. بعد ازاں ناٹنگھم مجسٹریٹس کورٹ میں ملزمہ شارلٹ جونز نے جرم کا اعتراف کر لیا، اس کے بعد عدالت نے 16 ہفتوں کی قید کی سزا سنائی، 156.69 پاؤنڈ بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا. اور ناٹنگھم شائر پولیس کے مطابق شارلٹ جونز مسلسل چوری کی وارداتوں کے 22 مقامی دکانداروں کے لیے شدید پریشانی کا سبب بن چکی تھی. تو جناب یہ حال ہے جناب. اینی وے خیر، ہم یہاں پر واپس اپنے اسٹوڈیو آ جاتے ہیں، برطانیہ سے واپس امیر پرکاش اسٹوڈیو آ چکے ہیں ہم، اور گھڑی

0: एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजाना सुबह।

टॉपिक आज मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने जिंदगी से सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है, सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है। आपके फेसबुक कमेंट्स की जानी मूव करेंगे। इकबाल लाशारी कहते हैं विलेज सोनो खान लाशारी से सुन रहे हैं बाजी गुलनाज नाइस शो है भली कर चौथा आधा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप शामले प्रोग्राम हुए। दर्द दिल भी आ गई है। हाय अस्सलाम वालेकुम गुल, कैसी हो? हाय टू आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू? वेलकम इन अवर शो दर्द दिल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपके दीगर मैसेजेस भी जो है पैनल वाले वो भी मैं चेक करती हूँ, जरा वो भी देखते हैं हम पैनल पर कौन कौन हमारे साथ हैं। मीरपुर खास से है राणा ताहिर भाई विद फैमिली, वेलकम कहेंगे। ताहिर भाई कहाँ घूमे आप, कोई अता पता नहीं है आपका, वेलकम आपको। वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू, थैंक यू। मैं क्या कहूँ जिंदगी से क्या सीखा, कोई एक हो तो बताऊँ। आप तो बस अब तो बस आखिरत का सबक सीखने में मसरूफ हूँ, रब आपको कामयाब करे और आपके साथ आसानी वाले मामलात हों यहाँ भी और वहाँ भी। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, थैंक यू। फौजी पठान खान खोसो केड़ा हाल आई, आई एम गुड, आप बताइए। और आपने न जाने क्या लिखा हुआ है, ये सिंधी में जो मैसेज लिखा हुआ है ना आधा, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा आपका, बस मैं नाम समझ रही हूँ आपका। ठीक है जी, बहुत

0: जो है न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे तो फायजा अली बशीर मेहरापुर से, वेलकम इन अवर शो मेहरापुर से, दिल खुश हो गया मेहरापुर में हमें सब सुन रहे हैं, जो भी सबको वेलकम कहेंगे, सखर वालों को भी, लाड़काना वालों को भी, मातली वालों को भी, मटियारी वालों को भी, तमाम सिंध में जहां भी आवाज हमारी जा रही है, सिंध के बाहर भी जहां जहां जिन जिन समातों तक मेरी आवाज पहुंच रही है सबको वेलकम कहेंगे। और आपने कहा, नुबशीर ने कहा, जिंदगी ने जीना सिखाया है, जिंदगी ने हंसना सिखाया है, जिंदगी ने प्यार करना सिखाया, जिंदगी ने सब कुछ सिखाया जो हमारे, और इतना ही आपका मैसेज हमें मिला मुबशीर, बहुत शुक्रिया, आप शामले प्रोग्राम हुए, थैंक यू। चलिए जी, आपकी कॉल शामले प्रोग्राम करते हैं, अगर आप भी कॉल के थ्रू प्रोग्राम का प्यारा सा हिस्सा बनना चाहते हैं तो डायल करना है आपने 03136615688। देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी, सिस्टर गुलाम रसूल मरी वीरपुर खास काकड़ी का।
0: वेलकम कहेंगे अदा, क्या कहेंगे आप टॉपिक के बारे में?
1: सिस्टर टीचर जी खिदमत कयम छो जो उन असांखे माने जेको पढ़ायो मेहनत कराए, बस मां पंहिंजे टीचर जे नाले चवंदुसि।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू सो मच, आप शामले प्रोग्राम हुए, सभी पारा वालेकुम असलाम। दर्दे दिल कहती हैं कि हम शो सुन रहे हैं फैमिली के साथ, वेलकम इन अवर शो ऑल ऑफ यू, थैंक यू और आई एम गुड। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो है आयजा खान है हमारे साथ, ओके आयजा खान जो है आपको भी हम कोशिश करेंगे आपका फरमाइशी गीत सुनाए, एक और कॉल शामले प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जनाब, वेलकम कह रहे हैं, कौन बात करता है?
2: जी भाई फारूक,
0: फारूक भाई सकर से कॉल किए, कैसे हैं आप?
2: अलहमदुलिल्लाह खैरियत, आप ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फारूक भाई, आपने जिंदगी से क्या सबक सीखा है? चले अच्छी बात है, क्या कहेंगे सब सुनने वालों को?
2: सलाम देंगे सभी को।
0: चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आप शाम में।
2: आज कलाम सुनाए,
0: कौन सा कलाम?
2: कितने मकबूल है तुम्हारी आँखें।
0: चलिए ब्रेक के बाद, न्यूज के बाद सुनवाएंगे आपको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, और जनाब आज हमने आपसे पूछा है आपने अपनी जिंदगी से क्या सबक सीखा है, तो इस हवाले से आपकी कॉल श्यामले प्रोग्राम हो रही है, लाइव कॉल नंबर अनाउंस करती चलूं 03136615688। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहे
2: हैं?
0: भली कार चौं था अदा, तव्हां खे कहिड़ा हाल आहिनि तव्हां जा? अलहमदुल्ला अदा, सब खैर है, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से, जिंदगी से क्या सबक सीखा? चले गुड हो गया, क्या कहेंगे सब दोस्तों से? सबनी पारा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। देखे जी, देखे डायरेक्ट आए, हाल अहवाल पूछा, टॉपिक पे बात की, सबको सलाम दे के चले गए अपने रास्ते, जा रहे खुश रहे, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, वालेकुम नाम, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन बात कर रहा है?
3: प्यारो शो ॿुधायो
0: अदा, भलीकार चऊं था तव्हांखे, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हां जा? जब आप बोर होते हैं तो फिर आप मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया करें, कुछ और अच्छा सुन लिया करें।
3: नहीं मैं आपका प्रोग्राम नहीं बंद करता हूँ, बोर भी हो गया आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: भाई ये फिर आपकी गलती है, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? चले गुड है, ये अच्छी बात है, क्या कहेंगे दोस्तों को?
3: मेरे दोस्तों में हमको सलाम।
0: चलो सबकी जानिब से वालेकुम असलाम, बहुत शुक्रिया।
3: शो नहीं चल रहा?
0: कौन से चैनल पे नहीं चल रहा है? चले मैं चेक करती हूँ, ठीक है दा, बहुत शुक्रिया। ओके जी, और जनाब हमारे ऑपरेटर्स की मेहरबानी है, हम क्या कह सकते हैं अगर नहीं चल रहा तो, जैसी उनकी।
2: वालेकुम सलाम, आप जनाब भाई किराल खुश है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रहा है? वेलकम कहेंगे आपको।
2: जी लगातार जितने बीस या लाख चार लाख आपका शो सुन रहे हैं, मेरे साथ मेरा अबू भी सुन रहा है, दोस्त हैं काफी, आपका शो सुनते हैं, अच्छा होता है। आप सुनाए आपके लिए।
0: अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
2: टॉपिक तो हम सुना, टॉपिक तो नहीं सुना है नाज भाई, काल मत करिएगा, बताओ कौन सा टॉपिक है।
0: आप सब सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे? हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाने वाले।
2: मैं सब सुनने वालों को ये पैगाम दूंगा कि आप बोले कम, समझे ज्यादा, सुने ज्यादा, कहे कम।
0: चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम।
2: ओके, और पाकिस्तानी असांखे गानो बुधराए आज तू गैर सही।
0: चलें ठीक है, ओके ओके जी। और जनाब कभी कभी ऐसा होता है हम दूसरों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं, खुद अमल नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम,
0: वेलकम कहेंगे आपको। अलीजा कैसी हैं आप?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, गुल आप कैसी हैं?
0: आई एम आल्सो गुड, मैं भी बहुत अच्छी। अलीजा बताइए क्या कहेंगी टॉपिक के बारे में?
4: मैं टॉपिक के हवाले से यही कहूँगी कि किताबों ने भी रहनुमाई की लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया ना, तो वो जिंदगी के किसी वर्क और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था।
0: अच्छा, उस सबक के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया?
4: बहुत चेंज आया।
0: अभी आप जो है सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, उस वक्त से लेके अब तक, उस सबक के बाद से?
4: बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं अपनी लाइफ से।
0: जबरदस्त, गुड, खुश रहे। बहुत शुक्रिया आपका अलीजा, आप शामले प्रोग्राम हुई।
4: और सॉन्ग प्ले करेंगी कुछ?
0: सॉन्ग कौन सा सुनना है आपने?
4: आए सांजो रोगी मनड़ो।
0: ओके, आई विल ट्राई। शायद ये काशिफ अंगाणी का या शफी फकीर, इन दोनों में से किसी एक का सॉन्ग है, अगर प्ले कर पाई तो प्ले कर दूंगी। ठीक है,
4: ओके ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप प्ले करती हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं।
0: चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू आप सबका, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
4: ओके अल्लाह हाफिज।
0: ओके जी, और जनाब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो जज्बात होते हैं ना, कीमती जज्बात, वो बहुत गलत जगह जाया कर रहे होते हैं। फिर होता ये है कि जो हमारे जज्बात के मुस्तहिक होते हैं ना, हमारे ब्लड रिलेशंस, हम उनसे किनारा कशी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं, जज्बों का जो है कोशिश किया करें, जज्बे आपके वहां खर्च हों जहां जज्बों के काबिल लोग हों, और ये हमारे साथ हैं। ये क्या लिखा है, आई थिंक उमैमा लिखा है आपने शायद। ओके उमैमा, बहुत शुक्रिया। चंदा थैंक यू, और आयजा खान ओके। आई विल ट्राई, ब्रेक के बाद जो न्यूज ब्रेक आ रहा है इसके बाद कोशिश करेंगे हम आपको सुनना है। और जनाब कोशिश किया करें 8881 पर SMS किया करें, आप लोग 8881 पर SMS ही नहीं करते, और जो लाइव कॉल वाला नंबर है उस फोन पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं आरजी मैसेज नहीं पड़ती है। कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या, हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको।

0: सिंधा कोर्ट सखर बेंच डहर के मां अगवा जाले नारी फहमीदा पिताफी के 10 अक्टूबर तक बाजियाब कराए पेश करने जो हुक्म दे छो। सरकारी वकील की माफी का पोए आईजी सिंध घर सेक्रेटरी जा जमानत जो गा वारंट्स वापस अदालत औरत की बाजियाबी बाबत दरख्वास्त वापस वठण ते भी सख्त कावड़ जो इजहार किया तो पुलिस दबाव विझी दरख्वास्त वापस नथी कराए सके। अदालत जो डीआईजी नासिर आफ्ताब पठान के नारी 10 अक्टूबर तक बाजियाब कराए पेश करने जो हुक्म। फैज़गंज ऐं कंबर में शहरनि जा बदमनीअ ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। कंबर में वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ शहरनि प्रेस क्लब अॻियां टायर साड़े धरणो हुयो। फैज़गंज में वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ महिरान हाईवे ते शामियाना हणी धरणो हयो वियो। पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी अॻवाननि जो चवण आहे त फैज़गंज जो अमन तबाह थी वियो आहे, पुलिस दुहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई नथी करे। उडरोला स्टेशन मां मालगाड़ी सां हादसे सबब मौत थियल अप एंड डाउन ट्रैक बहाल न थी सघिया। ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल मुसाफ़िरनि खे रहियल भाड़ा वापस कया विया। मालगाड़ी खे ट्रैक तां हटाइण ऐं रेलवे ट्रैफिक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। कराकुरम, तेज़गांव ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियूं ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल, ट्रेन जी अचवञ 24 कलाकनि ताईं मुअतल रहंदी।
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252586
2: जी हां 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

जैसा कि हर शख्स जिंदगी में मसरूफ़ जमाने की तेज रफ्तारी का मुकाबला कर रहा है, ज्यादातर लोग अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान खाना जल्दी जल्दी से खाते हैं। इसके नतीजे में बहुत से लोग इस बात से गाफिल रहते हैं कि वो किस कदर खा चुके हैं। इस बात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए कि हम क्या खा रहे हैं, इससे लुत्फंदोज हों, खल्फिशार से बचें, टीवी, लैपटॉप, फोन को दूर रखें, खाना खाते वक्त आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं, खाना चबाने और चखने के लिए वक्त निकालें। गजाई अज्जा से भरे खानों का इंतखाब घंटों भूख को खत्म कर देगा, आपको पेट भरने का एहसास दिलाएगा। कार्बोहाइड्रेट इंतहाई प्रोसेस शुदा खानों में होता है जिसमें रेशा गजाई अज्जा की कमी होती है, उनमें सफेद चावल, रोटी, पास्ता शामिल है। अपनी गजा में बहुत सारे फाइबर को शामिल करना वजन कम करने में माविन साबित होता है और प्रोसेस शुदा और शकरदार खानों की जगह सेहत बख्श खानों की सिफारिश की जाती है। चावल, रोटी, पास्ता सारा अनाज से बनाया गया है। सफेद चावल की जगह फल, गिरीदार मेवे और बीज, चीनी या नमकीन अशिया की जगह जड़ी बूटियों की चाय और पानी इस्तेमाल करें। अपने गजा में बहुत सारे फाइबर को शामिल करना वजन कम करने में माविन साबित होता है। इन खानों में फाइबर की ज्यादा मिकदार होती है। अनाज, गंदम का पास्ता, अनाज की रोटी, जो फल और सब्जियां जैसे मटर, फलियां, गिरीदार मेवे, बीज वगैरह का इस्तेमाल जो है वो भी फायदेमंद है। लेकिन तमाम तर बात आ जाती है कि आप कितना वजन कम करना चाहते हैं। बहुत से लोग जो है वो इस जानिब उनकी तवज्जो नहीं होती है। तो जनाब ये डिपेंड करता है आप पे। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट तो आपको भी करनी है। खाना नहीं कम करना है, मतलब खाना तीनों टाइम खाना है लेकिन मौजूं गुजा लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है और जितनी मिकदार में आपकी बॉडी को उस जो है कैलोरीज की नीड है उतनी ही लेनी है, एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। वेल जनाब फायजा अली की आवाज में और मुमताज मौलाई की आवाज में ये डुएट सॉन्ग आपने यकीनन एंजॉय किया होगा।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ये अपने मुंह आप कह देते हैं अपनी तरफ से। अब आपने कहा आप मुझे गालियां दे देती तो मैं क्यों दे देती भाई, आप कौन सा मेरी मंच खोल के ले गए हैं जब आपको गालियां देती। तौबा तौबा करें, तो मैं बुरी आरजू हूँ मगर इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं लिसनर्स को गालियां दूं भाई। कानों को हाथ लगाए अभी के अभी दो चार वर्ड सुने थे मैंने आपके। अच्छा, और हमने कुछ राइट किया, लिसनर की पोइट्री शामिल की थी आपने बाजी, तो गौर से सुना करो ना, सुनते खुद नहीं हो, इल्जाम बाजी के ऊपर। हाय, और क्या कहते हैं, पोइट्री भी, अच्छा मैंने पोइट्री भी पढ़ी थी लास्ट में, शायद पढ़ी हो क्यों। हाँ, पोइट्री की तो फरमाइशें करते रहते हैं लिसनर, मुझे कहते हैं पोइट्री लाजमी सुनाया करो, आप पोइट्री शो नहीं करती हो तो अपने प्रोग्राम के आखिर में गाने सॉरी पोइट्री सुनाया करो और मोहब्बत सच्ची हो ना माशाल्लाह। अब तो बाजी आप अल्लाह वाली बुजुर्ग नजर आती हैं। हाँ, बुजुर्ग गालियां देते हैं ना अपने पर, मैं मैसेज पढ़ के बैठी हूँ आपका, खबरदार शुरू में क्या कह रहे थे आप मुझे ओके बाजी माफ करना, पता नहीं क्यों सच लिखा है आपने भाई, गलत लिखा है, मैं नहीं बात करती, जाओ मैं नहीं बोलती। अब मैं गूंगे जो है ना उनके रेडियो पे प्रोग्राम करूंगी मुझे आपका मैसेज पढ़िए, बहुत हंसी आ रही है, मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
1: अदा
0: वेलकम कहेंगे, आसमान में लटका वो कौन सा मटका जिसमें पानी होता है?
1: ये नारियल।
0: अरे वाह, राइट आंसर है अदा आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये भाई इकबाल आशारी भाई जो हमारे हैं, ये जब भी आते हैं ना ये दुरुस्त जवाब लेके ही एंट्री होती है इनकी, बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू। और एक और सवाल पूछ लेते हैं हम आपसे। ओके लिसनर्स माशाल्लाह से मेरे जवाब दे रहे होते हैं, ऐसे इकबाल भाई तो हमेशा जो है राइट आंसर के साथ ही आते हैं। अब दूसरे लिसनर्स की बारी है, लिसनर्स अब आपने बताना है वो कौन सा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है, वो कौन सा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है, अगर मालूम है आप लोग काली कट जाती है आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया, कौन बात कर रहा है? उमायमा शाह। वो कौन सा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है? वो कौन सा उस्ताद है जो बगैर बोले सबक पढ़ाता है?
2: जिंदगी
0: तो है, लेकिन इस सवाल का जवाब कुछ और है। उमायमा बहुत शुक्रिया, आप शाम ने प्रोग्राम हुई चंदा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज भाई, हमारे बच्चे जो हैं, बच्चे भी सुन रहे होते हैं, ये जानकर खुशी होती है हमें। वो कौन सा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा
2: है? बात कर रही
0: हूँ, कैसी हैं आप? अरे वाह जबरदस्त जनाब, दे रहा है, दुरुस्त है, राइट आंसर है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।
2: आपने अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम?
0: हाँ जी, क्या कहा?
2: मेरी मम्मा ने या सिस्टर सब सुनती है भी आपका प्रोग्राम।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू।
2: मेरी आपकी आई डी थी, सुन रही थी आपका प्रोग्राम आज।
0: चलें, आप ही को भी जो है मेरी तरफ से बहुत सारा ढेरों ढेर शुक्रिया कहिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा चंदा, थैंक यू। और जनाब, ये आप लोगों का जो अनलिमिटेड प्यार होता है ना, इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है, बंडल ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू। और ये आप लोग जो इतना अनलिमिटेड हमें सुनते हैं, शामले प्रोग्राम होते हैं भाई, ये जो आप कीमती वक्त अपना हमें देते हैं ना, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी, इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है, इसका रिटर्न कुछ भी नहीं है मेरे पास। बंडल ऑफ थैंक्स, वो कौन सा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है जनाब? किताब, किताब है इस सवाल का दुरुस्त जवाब। आप मोहम्मद अजीज जरवार दुआ, रबे पाक आपको अरे वाह जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी दुआ दी है, ये दुआ रब सबके हक में कबूल करे। और कल ही इस हवाले से मेरी जो है गुफ्तगू हो रही थी, मदीने में मौजूद थे कुछ हमारे रिलेटिव जो गए हुए थे, मुझे बड़ा खुशी हो रही थी और मैंने उन्हें कहा था प्लीज हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी वहां पर आए। तो ये आपने इतनी सारी जो दुआएं भेजी हैं अदा अजीज, सेम टू यू, जजाकअल्लाह रब, ये दुआएं सारी आप समेत तमाम लिसनर्स के हक में कबूल करें। टॉपिक के हवाले से कहते हैं, गरीबों की मदद करना, बड़ों से इखलाक से पेश आना और पेरेंट्स की खिदमत करना, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया आपकी। آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بعد بادل ہے. نہیں جی نہیں, بادل تو نہیں ہے. اور بہت شکریہ جناب آپ کا. السلام علیکم باجی, آپ نے پروگرام میں نام نہیں لیا تو پروگرام میں کس کا نام لوں میں؟ آپ مجھے نام لکھ کے بھیجیں گے تو ہی لوں گی نا. آپ لوگوں کے میسیجز مجھے آدھے ادھورے کٹے پٹے ملتے ہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا آپ نجومی تو میں ہوں نہیں. کس نے کہا ہے آپ کو تین تین میسج کے برابر ایک میسج کریں؟ صرف ایک میسج میں آپ نام بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ویل جناب, یہاں پر ہم نے جو ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. بریک کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس.

0: पे है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम।

कोई जन्नत का तालिब है, कोई गमों से चूर है, अगर सजदा करवाती है इबादत कौन करता है। मिसेस तौकीर मीर प्रकाश से वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपने जो है हमें याद किया। और टुकड़े उठा उठा के मेरे जोड़ता है वो, टुकड़े उठा उठा के मेरे जोड़ता है वो, जुड़ जाऊं तो फिर से मुझे तोड़ता है वो। हमने तो इश्क करके खुदा पा लिया, मगर जो बह हुनर संग से सर फोड़ता है वो, पढ़ता नहीं सही फाये दिल की वो दास्तां, हर रोज एक वर्क ही नुक्ता नरोड़ता है वो। एक शख्स मुझ में यूं है बसा हुआ, मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ता है वो, टुकड़े उठा उठा के मेरे जोड़ता है वो, जुड़ जाऊं जब तो फिर से मुझे तोड़ता है वो। अब वही महफिलें हैं बुझी बुझी, वही दिन है तो वही शाम है, वही दुश्मनी के हैं सिलसिले, वही दोस्तों को सलाम है, वही ख्वाब हैं जले हुए, वही लोग हैं धुले हुए, वही सारे हैं मंजर कशी, ना कोई खास है ना कोई आम है, वही बनावट था बता कहाँ चला गया, कि मिले हैं जब भी कहीं ना दुआ है ना सलाम है। तू था तो इस शहर से था अजीब सा एक वास्ता, तेरे शहर के लोगों से मुझे भला क्या काम है, दुनिया बदल गई तो क्या हम इस मोहब्बत के दर पे हैं, हमारे वास्ते तो आज भी वही खास है वही आम है, हम इतना तुमसे था पूछना कि वफा ने क्या बुरा किया, क्या यही सिला है प्यार का, क्या यही इसका इनाम है, वही महफिलें हैं बुझी बुझी, वही दिन है तो वही शाम है, वही दुश्मनी के हैं सिलसिले, वही दोस्तों को सलाम है।

अमरीकी हमलनि बावजूद टियाकड़ी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राब्ता जारी आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जे बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं। ईरान जे परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान खे टियाकड़ी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। मुल्कनि खे अॻियां रखी ॻाल्हियूं कंदासीं। ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमिनी अॼु अची रहियो आहे। ज़रियनि मूजिबि इस्कंदर मोमिनी ईरान सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवीअ जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आखिरी कंदड़ मुल्कन अबूरी मुआहदे की बहाली लाए 10 दिन जंग बंदी की छड़ी ईरानी अहदेदार पारां बे 10 दिन की जंग बंदी वाली तजवीज़ मिलने की तस्दीक। आलमी खबरू इदारे राइटर्स मूजिब 10 दिन जंग बंदी जो मकसद अबूरी मुआहदे के बीहर बहाल करने जा दग गोलना है। ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीकी हमलन बावजूद ट्रियाकड़ी कंदड़नि ज़रिए बिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राबता जारी आहिनि। ईरान खे ट्रियाकड़ी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जे बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं।

ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नाए ॾींहं बि शदीद हमला। अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खुज़िस्तान ताईं पखिड़िजी वियो। महाशहर, बंदर इमाम, तबरेज, बोशहर, हुरमुज़गान, जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान पारां बि उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अली सालिम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार, गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमरीका इराक में हिकु अमरीकी फ़ौजी मार जी तस्दीक करे छॾी।

पाकिस्तान ऐं कैनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़, परडे॒ही वज़ीर इसहाक डार जी इस्लामाबाद में कैनेडियन हमनसब सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार चयो त कैनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी असांजे लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा बि मौजूद आहिनि। कैनेडियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौर वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे। ज़राअत, सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा वसी इम्कान मौजूद आहिनि।

बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस सीटीडी ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन टिनि ॾींहनि दौरान 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया। 3 लाश बि मिलिया। डीपीओ बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह करे हथियार हथ कया विया आहिनि। बम्बाती बारकज़ई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे।

जुडिशियल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में टे एडिशनल जज मुक़रर करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस जी सदारत हेठि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे इजलास में इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट क़ाइमु करण जो बि फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि इजलास दौरान सिंध हाई कोर्ट में टे एडिशनल जजिस मुक़रर करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई।

0: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। TFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ऐं ईरान ऐं अमरीका जा हिक ॿिए ते नए ॾींहं बि शदीद हमला। अमरीकी फिज़ाई हमलनि जो दायरो सिस्तान, बलोचिस्तान ऐं खोजिस्तान ते पखिड़िजी वियो। माशहर, बंदर अमाम, तबरेज, बोशहर, हरमुसगान, जासिक ऐं चाबहार में बि हमला कया विया। ईरान पारां बि उर्दन जे अकबा एयरपोर्ट ते अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। कुवैत जे अली सालम अमरीकी हवाई अॾे ते बि ड्रोन हमिलो। रेडार गोदाम MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया विया। अमरीका इराक में हिकु अमरीकी फ़ौजी मार्जन जी तस्दीक करे छॾी।
1: सोलर ऐं बैटरी
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ,
4: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331-252-5786।
8: जी हा, 2315-2575-786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: हाय हाय हाय।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हुकूमत तेल जा नवां अघ मुक़रर करण वारे तरीक़ेकार जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं हाणे रोज़ाने जी बुनियाद ते मुक़रर कयूं वेंदियूं। ओगरा रोज़ानो नयूं एक्स क़ीमतूं पंहिंजी वेबसाइट ते जारी कंदी। पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं आलमी मार्केट जे गुज़िरियल 7 ॾींहनि जे सरासरी अघनि सां ॻंढियल हूंदियूं। छंछर ऐं आचर ते पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में का बि तब्दीली न कई वेंदी। ओगरा खे रोज़ाने जी बुनियाद ते क़ीमतुनि जे ऐलान लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत जी मंज़ूरीअ जी ज़रूरत न पवंदी। ईरान ऐं अमरीका विच में छिकताण घटाइण लाइ आलमी सतह ते सफारती कोशिशूं जारी। ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि अबूरी मुआदे जी बहाली लाइ 10 ॾींहं जंगबंदीअ जी तजवीज़ ॾेई छॾी। ईरानी उहिदेदार पारां बि 10 ॾींहनि जी जंगबंदी वारी तजवीज़ मिलण जी तस्दीक। आलमी ख़बरू इदारे रॉयटर्स मूजिब 10 ॾींहं जंगबंदीअ जो मक़सदु अबूरी मुआदे खे ॿीहर बहाल करण जा दग ॻोल्हणा आहे। ईरानी परडेही तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीकी हमलनि बावजूदि ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राब्ता जारी आहिनि। ईरान खे ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जे बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं। ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमिनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रियनि मूजिबि इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जे दावते ॿिनि ॾींहनि लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल लासिम मुनीर घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमनी अहम दौरे ते इस्लामाबाद पहुंची वयो। ज़रियन मूजिब इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर जो खास पैगाम खणी पहुतो आए। मोहसन नकवी की दावत ते बिन डीहन ला इस्लामाबाद पहुंतल ईरानी घरू वजीर वजीर आजम शाहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मोहसन नकवी ए बेन सा मुलाकात कंदो।

ईरान ऐं अमरीका विच में छिकताण घटाइण लाइ आलमी सतह ते सफारती कोशिशूं जारी। ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्कनि अबूरी मुआहिदे जी बहालीअ लाइ 10 ॾींहं जंगबंदीअ जी तजवीज़ ॾेई छॾी। ईरानी उहिदेदार पारां बि 10 ॾींहं जी जंगबंदी वारी तजवीज़ मिलण जी तस्दीक। आलमी ख़बरू इदारे राइटर्स मूजिबि 10 ॾींहं जंगबंदीअ जो मक़सदु अबूरी मुआहिदे खे ॿीहर बहाल करण जा दग ॻोल्हण आहे। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवण हो त अमरीकी हमलनि बावजूदि ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए ॿिन्ही मुल्कनि विच में सफारती राब्ता जारी आहिनि। ईरान खे ट्रैकड़ी कंदड़नि ज़रिए पैगाम ऐं तजवीज़ू मिली रहियूं आहिनि। अमरीका सां ॻाल्हियूं क़ौमी मफ़ादनि जी बुनियाद ते ई करे सघजनि थियूं।

यमन जे होसी बागिन सऊदी अरब जी नाकाबंदीअ जो ऐलान करे छॾियो। होसी बागिन जे तर्जमान इंसारुल जो चवण आहे त सऊदी अरब सनआ एयरपोर्ट ते हमलो कयो, जवाब में असां बि बहिरी नाकाबंदी कई आहे, अख जे बदिले अख वारे असूल ते क़ाइम आहियूं। होसी बागिन जी नाकाबंदीअ खां पोइ इलाइक़े में छिकताण वधी वई। पाकिस्तान ऐं केनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल केनेडियन परडे॒ही वज़ीर जूं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां धारदार मुलाक़ातूं। केनेडा मां किनोला जी पाकिस्तान दरआमद जे प्रोटोकॉल ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं केनेडा विच में दोस्ताना लाॻापा आहिनि। वापार, सीड़पकारी ऐं ज़रात जे शोबनि में वधीक सहकार जी ज़रूरत आहे। केनेडा जे वज़ीर आज़म सां जल्द मुलाक़ात जो मुंतज़िर आहियां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवण हो त केनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा मौजूद आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान केनेडा सां लाॻापन खे सभिनी शोबनि में हथी ॾियणु चाहे थो। केनेडियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौर वधीक कम करण जी ज़रूरत आहे। ज़रात, सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा वसी इम्कान मौजूद आहिनि। बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस, CTD ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन। टिनि ॾींहनि दौरान 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया, 3 लाश बि मिलिया। DPO बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। बम्बाती बारकसई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे।

0: जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध इस्लामाबाद ऐं पेशावर हाई कोर्ट्स में जजिस जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस जस्टिस यहिया आफरीदीअ जी सदारत हेठि इजलास दौरान जजिस जी मुक़ररी ऐं मुस्तक़िलीअ ते ग़ौर वीचार कयो वियो। बदिलाई मूजिब सिंध हाई कोर्ट बाबति 5 एडिशनल जजिस जी मुक़ररी ते ग़ौर कंदे 3 जी मंज़ूरी ॾिनी वई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुरेश कुमार, एडवोकेट शाहनवाज मेमण ऐं एडवोकेट मोहम्मद हुमायूं ख़ान शामिल। एडिशनल जज ख़ालिद शाहानी जे मुदे में 6 महीननि जी वाद। एडिशनल जज सैयद फयाज़ुल हसन शाह मुस्तक़िल न थी सघियो। इजलास दौरान सिंध हाई कोर्ट आइनी बैचेस जे मुदे में 3 महीननि जी वाद कई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
1: नेस्ले प्योर लाइफ या
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: Ever。
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shahlagul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।